टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: और है ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिर ही जाने वाला।
1: तो तुम लोग क्या गया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा, खाओ खाओ।
0: माँ कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे, वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह से खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

0: मैं हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
1: तेरी याद सताए तो हम खाटू जाएं, तेरे सिवा शाह बता हम कहां जाएं।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ,
4: चावला टायर
2: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, दिल से बोलो, जय माता।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
3: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
2: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
3: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।
1: संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा.

0: सरदार आदमी तो नहीं पता लेकिन पूरा शहर रेडियो सुन रहा था, FM मुरादाबाद 89.6, इसी रेडियो पर सारा शहर झूम रहा था।
1: तेरा क्या होगा कालिया,
2: tune into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
10: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
12: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
13: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
12: पर पापा।
13: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
14: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
15: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
16: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
15: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
16: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
15: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
17: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
18: मेरी कसम
17: मिस कर दिया तो रीलोड।

0: मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पहला सामुदायिक रेडियो। और इस रेडियो पर पहला प्रोग्राम जो चल रहा है आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने वाला, जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग। और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और आज हमारे साथ हैं रीना। तो रीना, आपका स्वागत है, कैसी हैं आप इस प्रोग्राम में? आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो?
1: बहुत अच्छा हूं। और आज सुबह सुबह उठने में ठंड लगी या नहीं आपको?
2: नहीं नहीं यार, मेरे को सुबह उठने में ना, सच बताऊँ, जिंदगी का काम बड़ा मुश्किल लगता है सुबह उठना।
1: मुझे भी लगता है यार, लेकिन फिलहाल आज का विचार कहता है कि मन का हो तो बहुत अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा।
2: बिल्कुल।
1: तो देखिए, हर चीज हमारे मन से हो जरूरी नहीं है। जब हमारे मन से नहीं होती है तो वो ऊपर वाले के मन से होती है, यानी कि उस परमपिता परमात्मा के मन से होती है। और जब उसके मन का होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। जी हाँ। तो चलिए श्रोताओं, आज का हम आपका वार्म वेलकम करते हुए स्वागत करेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत सारी खास बातचीत आपको बतानी है। तमाम जानकारियां हैं जो हमारे आसपास के लोगों के डेली रूटीन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके काम में भी आने वाली है। तो मैं और रीना तमाम सारी जानकारियों के साथ आपके रेडियो पर हमने दस्तक दे दी है। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें संदेश पहुंचाकर दोस्तों 9837896896। चलिए श्रोताओं, एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। इस गाने के बाद मैं और रीना पुनः लौटेंगे, आपसे और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: आंखों में।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
4: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
5: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
6: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
7: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: बेहतरीन सा गाना। और उस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
1: जिसकी टेंशन हो या लव लाइफ की कंफ्यूजन, ब्रेकफास्ट जला हुआ मिला हो या खास दोस्त से हो पंगा, अब हर समस्या का एक ही सलूशन आरजे आनंद के बिंदास मॉर्निंग शो में हर मंडे सुबह 9 से 10 बजे यहाँ पर होंगी इंडिया की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी, जो सीधा आपकी समस्या का करेंगी समाधान। तो जुड़ना मत भूलिएगा हर मंडे सुबह 9 से 10 बजे ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम विद आरजे आनंद।
2: टू बुक योर अपॉइंटमेंट कॉल 9810709958 टुडे। फॉलो डॉक्टर वाई राखी _ ऑफिशियल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: भैया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चन है, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन आस्क मी। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आज ब्यूटीफुल मंडे की मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप। 8:36 हो रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर। आप कुछ पूछना चाहते हो मंडे की सुबह, गोल्डन चांस आपके पास।

दोस्तों आपको बताते चले, आज बहुत ही खूबसूरत 11 मई की तारीख हो गई है। समय का तो देखो बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि समय कैसा भी हो, बस शुक्राना करते चलिए उस ऊपर वाले का, उस परमपिता परमात्मा का, जिसने मुझे और आपको एक खूबसूरत सा जीवन दिया है, जिसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है, उसका शुक्राना करना ज़रूरी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तमाम सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं आज की सुबह मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप के नंबर से, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आप भी मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं 9837896896। चलिए एक काम करते हैं, अभी बात करेंगे आज के इतिहास के पन्नों के बारे में, क्यों महत्वपूर्ण है आज का ये दिन।

दोस्तों आपको पता है हर दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर दिन का इतिहास बहुत ही स्पेशल होता है और आज का इतिहास भी बहुत खास है। क्या कुछ खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है आज के इतिहास के पन्नों में, चलिए आपको बताते हैं। सन 1900 आज ही के दिन 95 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कक्ष में 24 दिन तक चले सम्मेलन की समाप्ति पर परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थायी बना दिया गया था श्रोताओं। और आपको बता दें 1998 में भारत ने राजस्थान के पोरखण में 3 परमाणु परीक्षण किए थे आज ही के दिन। और आपको बताते चले आज ही के दिन एक और ख़ास चीज़ हुई जो आज के दिन को और भी ज़्यादा ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ देती है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ आज के दिन 1957 में शक्ति सिन्हा, जो भारत के भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो निजी सचिव थे, उनका आज के दिन जन्म हुआ था। और आज ही के दिन सागर जी का भी जन्म हुआ। सन 1933 को भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पट कथा तथा लेखक रहे, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। उसके अलावा आज ही के दिन जन्मे के जो भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे, सन 1904 में इनका भी जन्म हुआ। तो आज के दिन से जुड़ी ये जानकारियाँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपके दिन को और भी खास और महत्वपूर्ण बनाती हैं। फिलहाल अब एक और गाना बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे अपनी फेमस एस्ट्रोलॉजर राखी जी को। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ अपना क्वेश्चन, थोड़ी देर में आप लाइव हो जाएंगे मेरे साथ।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
7: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
8: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
9: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
8: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
10: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
11: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
12: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
13: कॉल 8826213131।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: खूबसूरत गीत और इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। जी हाँ श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे पास ढेर सारे संदेश पहुंच गए हैं साथियों। आज की सुबह आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे इतने तमाम सारे आपके प्यार के लिए और इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे मैसेज और ढेर सारे संदेश की बौछार हो रही है। जैसे अभी मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर पूनम जी का, ये मुझे मैसेज लिखती हैं, आनंद जी सुप्रभात, और सुबह की अगर शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन बहुत बेहतरीन हो जाता है और आपका रेडियो सुनकर तो बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदेश पहुंचा है मेरे पास यहाँ पर राजू जी का, ये लिखते हैं, हेलो आनंद सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मंडे की सुबह जब आप आते हैं तो सुनकर बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। थैंक यू मॉर्निंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी, आपका भी दिल से धन्यवाद। एक मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है, हेलो हाय, माय नेम इज तबस्सुम, गुड मॉर्निंग आनंद जी। गुड मॉर्निंग तबस्सुम जी, ये मुझे मैसेज करती हैं आज़ाद नगर से और लिखती हैं, सुबह सुबह आपकी गीत संगीत सुन के मन को एक अलग सुकून मिल जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज पहुंचा है चमन लाल साहब का, पुतली घर रोड से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। और एक संदेश और पहुंच गया है मेरे पास, गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त जुल्फी। हेलो जुल्फी भाई, गुड मॉर्निंग, ये मुझे एक इमोजी शेयर करते हैं और साथ में एक बहुत ही सुंदर बढ़िया सी फोटो। इसमें लिखा है, जो आपको करना है वो आपको ही करना है, जो आपने सोचा है उसे आपने ही करना है। वाह क्या बात है साहब, जुल्फी भाई मतलब कमाल करते हो आप, सुबह सुबह इतनी बढ़िया और बेहतरीन लाइनें पता नहीं कहां से ले आते हो यार। रेडियो वाला आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। विक्की सागर जी मेरे साथ जुड़े हैं हेमगिरी हरथला से और ये इस वक्त निकल चुके हैं शायद अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पर, यानी कि ये भी हमारे शहर में ऑटो चालक हैं। सुबह सुबह निकलते हैं, जनता को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं और ऐसे लोगों के लिए बिग शाउट आउट निकलता है भाई रेडियो से भी और हमारी तरफ से भी एक तगड़ा वाला सलाम यार ऐसे जज्बे को। कल हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदर्स डे सेलिब्रेट किया। आई होप आप लोगों ने भी मदर्स डे बहुत अच्छे से मनाया होगा। और बिल्कुल साथियों, कोई मनाने का जो स्पेशल डे होता है, जो स्पेसिफिक दिन होता है, उसको अच्छे से ही सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। हमारे पास एक वॉइस नोट आया है, जरा इनको भी सुनते हैं। ये शफी अहमद साहब है, कुछ पहुंचाना चाहते हैं, जरा सुनते हैं इनके दिल की बात। जी कहिए साहब।
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
1: हैप्पी मदर्स डे सब लिसनरों को, सभी आरजू को। कुछ लाइनें बोल रहा हूँ। मम्मी हमारे घर की शान है, उनके बिना जिंदगी अधूरी है। मम्मी में बसी है सबकी जान, रखती है हमारा ख्याल, उनके कंधे पर घर की जिम्मेदारी है। फिर भी वो करती है हमसे प्यार, जिम्मेदारी है लाखों सामने, चलता है सब उन्हीं से परिवार। रखना हमेशा उनका ख्याल, करना हमेशा उनकी इज्जत। मम्मी हमारे घर की शान है, उनके बिना जिंदगी वीरान है। मदर्स डे हैप्पी यू।
0: थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी अल्फाज रखे, आपने जो भी दिल की बात कही और दिल से कही, उसके लिए आपका शुक्रिया। और मदर्स डे तो चला गया, लेकिन मदर्स डे की जो फुल वाइब है वो अभी भी है। चलिए श्रोताओं, थोड़ी देर में हम लेकर आते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी जी को। आप कहीं मत जाइए, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं 9837896896 स्टूडियो का नंबर है। आपको अपने लव लाइफ के बारे में, फाइनेंस के बारे में, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, शादी नहीं हो रही उसके बारे में, कुछ भी आपको जानना है, आपका लोन बहुत चढ़ गया है, आपको उतारना है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में बात करनी है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपको ये जानना है, जो भी आपके क्वेश्चन है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन आस्क मी मंडे की सुबह। दिस इज एब्सोल्युटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज की सुबह आपके लिए है। आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो से हम आपके लिए हर मंडे लेकर आते हैं चेक योर लक विद डॉक्टर राखी। तो बहुत ही कमाल के एस्ट्रोलॉजर थोड़ी देर में होंगी ऑन एयर मेरे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। एक और बेहतरीन ट्रैक निकल गया है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आपके रेडियो सेट पे, जसविंदर नरोला की बहुत ही बेहतरीन आवाज, साथ में रूप कुमार जी देंगे साथ। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस क्यू दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
4: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
5: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
5: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
5: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
8: बिल्कुल बात वही है जो आप चाहते हैं और वही बात हम भी करते हैं जी। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग, आनंद के साथ हैं आप। और देखिए, तीसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 9:04 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त। और आप जो है भाई साहब, मेरे पास जो लगातार ये मैसेजेस कर रहे हैं ना, इस ये जो प्यारे प्यारे आप संदेश पहुँचा रहे हैं, इन सब के लिए आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं यार। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा यार मुरादाबादीज, थैंक यू सो मच वेल इन मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे घंटे की शुरुआत हो ही गई है, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच इस मॉर्निंग को इतना अमेजिंग बनाने के लिए। सोमवार की सुबह 11 मई की तारीख है आज, और आपको बताते चले, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की अपील जो आज की सुबह हर न्यूज़ का हिस्सा बन गई है, कुछ बातें जी हाँ, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है सबसे पहले कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, यानी कि अब घर से ही काम किया जाए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ भी बोली है जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम की प्राथमिकता उसको दी जाए, यानी कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए। और मुझे लगता है कि कोविड ने तो वर्क फ्रॉम होम में हमें सिखाई दिया है कि कैसे घर से हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक साल तक सोना खरीदने से बचें, उन्होंने इसके बारे में भी अपील की है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भैया, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए मेट्रो से सफ़र जो आप नहीं करते हैं, वो जो मेट्रो सिटी के लोग हैं वो मेट्रो से सफ़र करें। एंड साथ ही साथ उन्होंने भाई साहब एक और रिक्वेस्ट की कि अगर आपको पार्सल रेल से अगर आप भेजेंगे और कार का कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी जो है काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल की खपत। और साथ ही साथ ये भी बताया कि भैया, खाने के तेल का उपयोग जितना हो सकता है कम से कम करें, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के ना करें, और वैसे भी यार ऑयल तो कम ही यूज करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की कि जो विदेशी ब्रांड उत्पादक हैं उनका उपयोग कम करें, स्वदेशी को ज़्यादा अपनाएं, यानी कि लोकल फॉर वोकल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं उसको वो कह रहे हैं कि भैया, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि इसका आधा इस्तेमाल करें, प्राकृतिक खेती के लिए जो है ना नेचुरल खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए, छोटी छोटी रिक्वेस्ट अगर की है उन्होंने तो शायद कुछ अच्छा ही होगा बॉस। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क फ्रॉम होम पर जो है जोर देने की बात कही जा रही है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, अगर वर्क फ्रॉम आपका हो जाए तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा या आपके लिए मुश्किल हो जाएगा? प्लीज़ टेल मी, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो सकता है। ऐसे कुछ लोग चाहते हैं यार घर से ही काम मिल जाता तो कितना बढ़िया होता है, लेकिन अगर ये एक बार फिर से आपको मौका मिल जाए तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको क्या ये चीज़ सही लगेगी कि आप घर से काम कर सकते हैं, या फिर आप तो नहीं भैया मैं तो ऑफिस जाके काम करने वाला हूँ, मुझे घर पे फुल वाइब नहीं आती, मेरे को तो ऑफिस में मजा आता है, या आप उस वाले में हैं? बताइएगा जरूर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी लेकर आते हैं आज की सुबह अपने एस्ट्रोलॉजर को। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं आज की सुबह। आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत गीत के साथ करेंगे इस तीसरे घंटे की शुरुआत।
9: कुछ भी ना मांगूं कभी मैं।
8: आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तो देखिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजर राखी जी। मैंने जैसे कि कहा था कि वो थोड़ी देर में मेरे साथ लाइव होंगे एंड वो ऑन एयर हैं, तो आइए जरा उनका वेलकम करते हैं बिना किसी देरी के। जी राखी माँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि बहुत जरूरी है वेलकम करना, तो मैं भूल ही गया लाइव आपका।
1: अरे कोई इशू नहीं है।
0: हाँ, सो मुरादाबाद आने के बाद, मुरादाबाद में पहली बार आप मुरादाबादी से मिल रहे हो, तो आप कैसे हो और अभी आप कहाँ हो, मुझे ये जानना है आपसे।
1: देखिए मैं तो इस वक्त मुंबई में हूँ और मुरादाबाद आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मुरादाबाद का सुना था उससे भी बेहतर है मुरादाबाद। आई फील सो गुड और मुरादाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मुझे सुन के बहुत ही आनंद आया। और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज कनिका, और ये मुझे मैसेज करती है गायत्री नगर से। इन्होंने लिखा है, आनंद जी राखी माँ को प्रणाम, और राखी माँ से मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि मेरे को लोन अपना जो है कराना है, बट वो बहुत दिन से डिले हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा लोन कन्फर्म हो जाए।
1: आज 11 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर मेष राशि में जा रहा है। मैंने सुबह इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है। जो भी लोग अपना घर बनाना चाहें, लोन लेना चाहें, घर बेचना चाहें और लोन उतारना चाहें, तो जुलाई तक उनके सारे काम हो जाएंगे। कल हनुमान जी के मंदिर में अनार का भोग लगाएं।
0: क्या बात है, और एक मैसेज और पहुंचा है मेरे पास, ये स्टूडेंट है, इन्होंने लिखा है, 12th हो गया है आनंद जी, मेरा नाम वैभव है, और मुझे पूछना है कि मैं अब क्या आगे फ्यूचर में करूँ, बहुत कंफ्यूज हो रही है मेरे को, कंफ्यूजन
1: जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फ्यूचर में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो हमेशा एक काम कर लेना चाहिए कि आपको कोई काउंसलिंग ले लेनी चाहिए और आपको मंडे की फास्टिंग कर लेनी चाहिए। महादेव के मंदिर में जाने से हर कंफ्यूजन दूर हो जाती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मैसेज मेरे पास और आया है राखी माँ से, मुझे पूछना है कि मैं एकादशी का व्रत आज रख सकती हूँ क्या मैम, अब तो टाइम भी नहीं है।
1: एकादशी 13 तारीख की है, 13 तारीख को रखिए एकादशी का व्रत।
0: ओके ओके, 13 को है, यानी कि अभी एक दिन और बचा हुआ है
1: जी।
0: ओके ठीक है राखी माँ, इस बार कौन सी एकादशी है और क्या स्पेशल है इस बार इस एकादशी में?
1: एकादशी अपरा एकादशी है और ये एकादशी जेठ के महीने की एकादशी है। कहते हैं अपार धन देने वाली, अपार सुख सुविधा देने वाली, अपार शक्ति देने वाली, हर चीज वो मिलती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो।
0: क्या बात है, एक मैसेज मेरे पास और पहुंचा है, दिल्ली नोएडा से मैसेज आया है, ये नोएडा भी लिख दिया, दिल्ली भी, खैर। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम अपराजिता है और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है बिजनेस, लेकिन कुछ डाउनफॉल आ रहा है मेरे बिजनेस में।
1: पहले बिजनेस को आप संभालते हैं, फिर बिजनेस आपको संभालता है, 6 महीने लगेंगे पर बिजनेस अच्छा चलेगा।
0: वेरी नाइस, एक मैसेज और मेरे पास पहुंच गया है राखी माँ से, मुझे पूछना है, मैं भी मुंबई में हूँ, तो मुंबई में वो उनसे कैसे मिल सकता हूँ, नाम भी नहीं लिखा है उन्होंने।
1: उनको बोलिए कि आप मुंबई में मुझसे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, मेरे नंबर आएंगे, मेरे असिस्टेंट आरती पूजा को कॉल करिए और मुझे मुलाकात।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा राखी माँ, ये जो मंगल, कल बड़ा मंगलवार है, मंगलवार के बड़े महत्व होते हैं, कल दूसरा बड़ा मंगलवार।

0: चालीसा में नहीं लगता है।
1: आपको हनुमान चालीसा करनी नहीं है, सुननी है।
0: ओके, ये इनका तरीका है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतने सारे क्वेश्चन भेजे। बाकी नेक्स्ट टाइम फिर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैम बहुत बिजी है। मैम, जाते जाते आप कुछ कहना चाहती हैं मुरादाबादी को, है कोई रेमेडी?
1: बिल्कुल, मुरादाबादी दाल का लाजवाब है, लाजवाब है, जवाब ही नहीं है। और आरजे आनंद का जवाब लाजवाब है। तुम बहुत बेहतर बेहतरीन हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यूं ही करते रहो। और भक्तिमय गीत कल सबको सुनाना और ऐसी कहानियां सुनाना भजन के माध्यम से जिससे लोग मोटिवेट हो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, और अपना भी आप ख्याल रखिए। आप बहुत प्यारे हैं।
1: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेटा।
0: थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी। थैंक यू सो मच। तो ये जुड़ी थी डॉक्टर राखी जी मेरे साथ, इंडिया की जानी मानी, वेरी वेरी अमेजिंग पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर। एंड नेक्स्ट मंडे फिर से होगी इनसे मुलाकात। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आप इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर वाई राखी ऑफिशियल के नाम से मिलती है। ब्लू टिक वाला इनका पेज है, गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग रेमेडीज बताते हैं और लोगों की लाइफ को थोड़ा सा सॉर्टेड एंड ईजी बनाते हैं। फिलहाल हमने भी कर दी बहुत सारे लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व।
2: जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: भाई साहब, मैं पलक नहीं देख रहा ना, मैं चांद देख रहा हूँ। मैं सिर्फ रोड पर जाम देख रहा हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई साहब, इतना तगड़ा जाम था कल रात को, मैं आपको बता नहीं सकता यार, लेकिन बताना पड़ेगा। मतलब सीरियसली, से जोक्स अपार्ट, बट अभी मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कल रात को आई थिंक 7 बजे के समथिंग, भाई साहब मानसरोवर से लेके प्रकाश नगर पे जो भसड़ मची पड़ी थी ना जाम की, भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतना भयंकर जाम, रामलीला ग्राउंड तक भाई इतना तगड़ा जाम था। मैंने सोचा चलो भाई यहाँ से यू टर्न मार के अपन चलते हैं मंझोली की तरफ, मंझोली की तरफ से अपन निकल के आएंगे तो उधर मंझोला होते हुए पुतली घर रोड पहुंचेंगे। भाई साहब उधर आए तो उधर भी जाम, मतलब उधर भी रोड ब्लॉक। तो भाई मैं क्या, ये क्या ही हो रहा, आप छोटी छोटी गलियों में निकले तो भैया वहां पर मिनी मेट्रो फंसे पड़े हैं। तो मैं क्या यार, ये क्या मतलब ऑटोमेटिक सटकली हो रहा है भाई, क्या भसड़ मची पड़ी है। वैसे कल रात के इस जाम में कौन कौन फंसा था, मैसेज करके जरूर बताना यार। और ये जो आजकल बढ़ते जाम की समस्या हो रही है ना अपने शहर के अंदर, क्यों ये इतना जाम बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है आपको उसका रीजन क्या है यार, और ये जाम कैसे कम हो सकता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल आज की सुर्खियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ, जो हमारे पीएम साहब हैं उनके कुछ रूल्स बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने जो अपील की है कि भैया आपको 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, आपको जो है वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, इससे जो है पेट्रोल डीजल की खपत होगी, ऐसे तमाम सारी जो अपील है उनकी आज की सुबह बहुत ट्रेंड कर रही सोशल मीडिया पर। उसी से जुड़ा मैं पूछ रहा था कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो जाए तो क्या इसके एडवांटेज हैं या फिर क्या इसके डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब आपको पसंद है या नहीं, क्या लगता है अगर वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा तो इससे कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग व्हाट्सएप के लिए, बहुत प्यारे प्यारे संदेश आप पहुंचाते हैं मुरादाबादी। देखिए मेरे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं। योगेंद्र जी, मैं बढ़िया हूँ, ये लिखते हैं सर वर्क फ्रॉम होम से शहर के अंदर का जाम कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुनिधि। आनंद जी मुझे लगता है कि जब वर्क फ्रॉम होम होगा तो डीजल पेट्रोल अपने आप ही जो है उसके रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि सड़कों पे गाड़ियां ही कम होंगी तो फिर कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी कम होगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा। क्या बात है। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग, हाय माय नेम इज, क्या लिखा है इन्होंने, शकुन जी, शगुन ओके शगुन मुझे लिखती है कि आनंद जी अगर वर्क फ्रॉम होम हो गया ना तो सारे लोग जो घर से दूर भागते हैं ना वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा हो जाएगा, एक फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी होगा। ये तो अच्छा बोला यार आपने। एक मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राशिद, और राशिद मुझे लिखते हैं आनंद जी अगर अनफॉर्चुनेटली मैं बोल रहा हूँ अगर वर्क फ्रॉम हो जाए, फॉर्चुनेटली वर्क फ्रॉम होम हो जाए तो यार घर पे ना काम नहीं होता है, घर पे बड़ी भसड़ मच रही होती है, उधर से कुकर की सिट्टी आ रही होती है, इधर से कोई और चिल्ला रहा होता है, तो वो जो एक पीस है वो मिल नहीं पाता है। ओ भाई, एक मैसेज और आ गया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है, आज आपने बहुत ही सही पूछा है, मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम हो जाना चाहिए, जो लोग बाहर अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं ना और फिर बाद में बड़ा मिस करते हैं कि यार आई होप मैं घर पे ही होता, आई होप मैं घर पे ही होता, तो उनके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड वेरी ऑनेस्ट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आनंद जी वर्क फ्रॉम होम हो जाना चाहिए यार, मजा आ जाता है यार जब घर से काम करते हैं, उसकी वाइब ही अलग होती है। हाँ यार ये बात भी सही है, लेकिन ऑफिस ऑफिस होता है यार, ऐसा नहीं है घर से काम नहीं हो सकता। ऑफकोर्स कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हम घर से भी काम कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग्स हो, अपने जो भी काम हो, अपने क्लाइंट से मिलना जो भी है, वो सब कुछ वर्चुअल हो सकता है, एंड दैट इज वेरी इजी। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया है, एंड 2026 चल रहा है जहां पर AI का जमाना आ गया है, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक हो गई है। बट सी, आई वांट टू आस्क यू दिस मंडे मॉर्निंग, क्या लगता है आपको, आप भी मुझे बता सकते हो वर्क फ्रॉम होम के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आप मुझे बताइएगा। आपके लिए कितना ज्यादा सही है वर्क फ्रॉम होम, आपको क्या लगता है, आप बताओ वर्क फ्रॉम होम करने से क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है, टेल मी यार, बताओ जरा। इससे पहले वॉइस नोट सुनते हैं।
1: नमस्कार मुरादाबाद वासियों, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं पीतल नगरी का सबसे बिंदास प्रोग्राम और बिंदास रेडियो पर, जिसका नाम है FM मुरादाबाद और प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग। कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी रही होगी, चाय भी आपको कड़क सी मिली होगी। सुनते रहिए FM मुरादाबाद, FM मुरादाबाद जो आपको गुनगुनाता भी है, नचाता भी है और समझाता भी है। ये है आपका अपना रेडियो स्टेशन, भेजते रहिए अच्छे अच्छे से मैसेज, बिंदास से मैसेज, और बढ़ाइए अपने अपने RJs का हौसला। जी हाँ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद जो आपको एंटरटेनमेंट भी कराता है, जानकारी भी दिलाता है। और मैं आपका दोस्त हूँ गोपी शर्मा, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व के ही ना हो वह आपके शब्दों की और भावनाओं की क्या कदर करेगा। नमस्कार, राधे राधे।
0: क्या बात है भूपी जी, थैंक यू सो मच। आपको भी राधे राधे, इतना खूबसूरत ये संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। 9:30 हो गए हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय। एक काम करते हैं, गाना निकल गया, इसी को सुनते हैं। बैड न्यूज का बहुत ही प्यारा गाना, विकी एंड ट्रिप्टी के ऊपर पिक्चराइजेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। कल मैं एक कोरियोग्राफी वर्कशॉप में गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहां पर जाके क्या चीजें मेरे को जानने को मिली हैं। अभी लौटकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या स्पेशल चीजें हुई हैं, एंड वो वीडियो वर्कशॉप का आप मेरे स्टेटस इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। कैसे, इस गाने के बाद बताता हूँ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर UKG तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, AI, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, अपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
9: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग मेरी आजी आजी आनंद के साथ। मैंने कहा जी गुड गुड वाली मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजते ही मेरे अंदर जाग जाती है ये विद्या बालन।
12: हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है?
11: अरे नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली।

आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, ऑफ कोर्स आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग ट्रिप पे, मैं भी आपके सफर का साथी हूँ जी। हाँ, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है ना। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था, वर्क फ्रॉम होम अगर हो जाए मुरादाबादी से, अगर वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट कर दिया जाए तो इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपके हिसाब से, क्या वर्क फ्रॉम होम सही है? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आज की सुबह। और क्या है मैसेज आए हैं, अभी लौट कर आते हैं फिर पढ़ेंगे जी। और एक छोटी सी गवर्नमेंट स्कीम योजना आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना यार।

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना। गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी, गुड मॉर्निंग। और मेरे पास मैसेज आया कि वर्क फ्रॉम होम अगर हो जाएगा ना, तो शहर में जो जाम है वो तो कम होगा ही होगा, लेकिन शहर में जो है स्वच्छता भी नजर आ जाएगी। मेरे पास मैसेज पहुंच गया है आज की सुबह पिंकू जी का, इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया है गायत्री नगर से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 9:40 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बड़े सारे लोगों को ना यार अपना काम करना है, अपना कारोबार करना है, लेकिन पैसा नहीं है ब्रो, पैसा कहाँ से लाएं यार। मन में इच्छा तो है कि खुद का बिजनेस करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, लेकिन लोन अगर मिल जाता तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाती चीज़ें, मेरे लिए थोड़ी सी ईजी हो जाती है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं तो चलो जी, इस प्रॉब्लम का सलूशन है वैसे हमारे पास। हम आपके लिए कुछ खबर लेकर आए हैं इसी से जुड़ी। अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मुझे तो इसमें जो है जानकारी लेनी है, कैसे लोन मिल सकता है, कैसे अपना व्यापार आगे बढ़ सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना।
1: दीपेंद्र कुमार, उपायुक्त उद्योग मुरादाबाद। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10,00,000 युवा उद्यमी बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की जो प्रमुख जो एलिजिबिलिटी है वो है कि कोई भी युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो और न्यूनतम 8वीं पास हो और 21 से 40 साल का अगर वो युवा आयु है उसकी, तो वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 5,00,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन उस पर मिलता है, जिस पर युवा को कोई भी ब्याज अगले 4 वर्ष तक नहीं देनी है। ऊपर से उसको 10% उसको सब्सिडी उसको मिलेगी। अब तक जनपद मुरादाबाद में इस वित्तीय वर्ष में 25 से 26 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2230 युवाओं का ऋण स्वीकृत हो चुका है, जिसमें कि 2000 युवाओं को ऋण प्राप्त भी हो चुका है। तो इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी अपना कार्य शुरू करना चाहता है तो हमारी इस योजना के अंतर्गत बैंक के माध्यम से 5,00,000 रुपए तक का कोलेट्रल फ्री इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के ये ऋण प्राप्त करके अपना व्यवसाय, अपना उद्योग

0: स्थापित कर सकता है जिसपे उसको 10% जो ऋण है उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 10% उसको सब्सिडी के रूप में भी मिलेगा।
1: क्या बात है यार, देखिए बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपको मिल गई है। और अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया है कि भैया 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आप इस योजना के बारे में और जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में आपको सारी जानकारी इसके विषय में मिल जाएगी। और आप जो है अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। तो ऐसी खास जानकारियों के लिए प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। ऐसे ही भैया आप सुनते रहिए, बजाते रहिए और आपके लिए अच्छी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 9:43 का समय हो रहा है। आज के दिन और क्या कुछ खास और स्पेशल और महत्वपूर्ण सेलिब्रेट किया जाता है इस पे भी हम एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं एक और खूबसूरत गीत पर। और ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। इस गीत के बाद मैं लौट कर आऊंगा तो फिर आपके लिए कुछ और खास बात भी बताऊंगा। वैसे आज के दिन के बारे में तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बहुत प्यारा आज का ये दिन है और बहुत ही प्यारी आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आपको बतानी है मुझे, बस आप जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले एक और बढ़िया गीत जिसको सुन के आपको आनंद आ जाएगा, बहुत प्यारा गाना है। ये गाना आपके रेडियो सेट में निकल रहा है आज की सुबह यानी कि मंडे की मॉर्निंग में। चलो इस गाने को सुनते हैं फिर आपको वापस मिलते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: देखिए मुरादाबाद तो आप सुन रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के साथ ही साथ मुरादाबाद पे अभी हम बात कर रहे हैं एक कड़क सवाल की। 9:51 हो गए हैं, एक छोटा सा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका जवाब आपको देना है। मतलब एक गाना बहुत पॉपुलर है, ये गाना कौन सी फिल्म का है और कौन सा गाना है आपको मुझे बताना है। और इसे बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना फ़ोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। आपको कहाँ पर भेजना है इसका राइट आंसर, अरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने बताया। सवाल सुनो ज़रा, कौन सा गाना है ये आपको पहचानना है, ठीक है। सो 3, 2, 1, गो स्टार्ट। बहुत ही प्यारा है गाना, आपको इसको पहचानना।

चलो जी मैसेज करो 9837896896। कौन से गाने का अभी आप ये जो सुन रहे हैं पाजी पार्ट, वो कौन से गाने का है, कौन सा गाना है ये गेस्ट करना है आपने अपने नाम के साथ अपना सही जवाब 9837896896। स्टूडियो का नंबर है, इंतजार रहेगा हमें आपके मैसेजेस का। फटाफट आपने उठाना है अपना फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। मंडे की सुबह है, मंडे ब्लूज आपको नहीं होने देंगे, अच्छे गाने आपके लिए बैक टू बैक आते रहेंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, वो गाने जो आपका दिल सुनना चाहता है।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: था मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
4: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
3: अरे वाह।
4: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
3: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
5: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद, कॉल 9548088900।
6: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
7: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
8: देखो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आज सोमवार की सुबह और आपके पास ये लास्ट मौका है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप बन सकते हैं आज की सुबह हमारे शो के सुपरस्टार। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं, ये मेरा कड़क क्वेश्चन नहीं है पाजी, वो गलती से हो जाती है मिस्टेक। मेरा कड़क क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी मैं म्यूजिक चला रहा हूँ वो कौन से गाने का है, मतलब ये जिसमें जो पाजी सिटी बजा रहे हैं वो कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का गाना है? बहुत ही पॉपुलर मूवी, बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट, बहुत ही कमाल के डायरेक्शन में बनी मूवी, करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी। तो भैया अब बता दो जरा हमको, ये कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है? 9837896896 ये आपने हमको बताना है हमारे व्हाट्सएप पर। नंबर अपना है 9837896896, 9837896896 इस नंबर पे फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करना है। बताता हूँ आज कौन कौन से स्पेशल डे मनाए जाते हैं।

डारियां, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अमेजिंग आवाजों में अभी आप एंजॉय कर रहे थे। और ये आवाज जो है ना पाजी, तो सतिंदर सरताज जी की आवाज है यार, सच में बहुत प्यारा गाना है। और ये जो वॉइस है ना, मतलब क्वालिटी अल्टीमेट है यार, गाना बहुत ही हार्ट टचिंग है। मुझे पता है आपका फेवरेट है गाना, इसलिए मैंने चला दिया। मैं मंडे आपका बढ़िया बना दूं यार, चलो नेशनल ईट व्हाट यू वांट टू डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। एंड आई डोंट नो कि भैया अभी ये मुझे भी नहीं पता है कि कैसे कैसे डे आजकल मनाए जाने लगे हैं। कुछ ऐसे ऐसे डे जिनके बारे में मुझे लगता है कि बात करो तो प्रॉब्लम है, ना करो तो भी प्रॉब्लम है पाजी। लेकिन वेल आगे बढ़ते हैं। 11 मई की सुबह है आज, मंडे मॉर्निंग। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड हॉटीज कपकेक डे भी आज मनाया जाता है। वर्ल्ड ईगो अवेयरनेस डे मनाया जाता है कि भैया हम जो ईगो लेके घूमते हैं ना, इसको जेब में रख के घूमेंगे तो ज़्यादा सही होगा। इसके अलावा नेशनल विमेंस चेकअप डे आज मनाया जाता है। ऑफकोर्स यार, विमेंस इतनी एक्टिव रहती हैं तो एक बार तो उन्हें भी अपना चेकअप कराना चाहिए। वो पूरी तरह हेल्दी तो दिखती हैं लेकिन अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग जाती हैं जो कि पता नहीं चलता है ना, तो इसीलिए जो है ये स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल विमेंस चेकअप डे आज मनाया जाता है 11 मई को। एंड नॉइज एक्शन वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है 11 से 15 मई के बीच। 6 मई से 12 मई के बीच हम मना रहे हैं नर्स दिवस। जी हाँ, नर्स वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाएगा, तो इसके बारे में कल ही हम बात करेंगे सिस्टर्स से, लेकिन फिलहाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। हाँ, आपको बता दें नेशनल सॉल्ट अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है 11 से 17 के बीच, यानी 11 मई से 17 मई के बीच जो है अभी हम मनाएंगे। आज से शुरू हो गया नेशनल सॉल्ट अवेयरनेस वीक। ज्यादा नमक खाना भी खतरा होता है बॉस, पता है ना बॉडी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, 10:05 हो गए, मैंने कहा था आप मेरे को जरा मैसेज करके बताना है जो गाना चल रहा है पाजी कौन सा वाला है।

0: व्हाट्सएप करके आपको मेरे को मैसेज करके बताना था व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे लोगों ने मेरे को सही जवाब दिए हैं, और हमारे पास सबसे पहले सही जवाब पहुंचा था किन का, जरा सुन लेते हैं।
1: आनंद जी, मैं मुरादाबाद चंदन नगर से मुकेश गौर बोल रहा हूँ।
0: जी मुकेश जी,
1: और ये मूवी है कुछ कुछ होता है।
0: क्या बात,
1: ये लड़की एक अनजानी सी है।
0: कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाइयाँ, आज की सुबह आप बनते हैं सुपरस्टार। आज मुरादाबाद के धुरंधर मुकेश जी आप बनी गए हैं यार आज की सुबह, बहुत ही बढ़िया।
2: बंद कर दे फ्लड।
0: बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दे दिए थे। देखिए मेरे पास ये गलत जवाब पहुंच गया था आज की सुबह हनीफ जी आपका, ये कटी पतंग का बिल्कुल गाना नहीं था, गलत जवाब हो गया आपका। हेलो हाय प्रीति सक्सेना जी, गुड मॉर्निंग, ये मुरादाबाद से मैसेज कर रही है। इन्होंने मैसेज किया है, हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय। हो क्या रहा है यार आज, क्या हो क्या रहा है आज। प्रीति जी थैंक यू सो मच, मेरे को रोनी आ जाएगी। दावा से रिकवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी लिखते हैं, साथ में निखत परवीन, बेटे के नाम मोहम्मद रूहान खान। आनंद सर वेरी गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब चल रहा है, सवाल का जवाब हमें मालूम नहीं, बड़ी ईमानदारी से बताते हैं साहब आप। शाने आलम जुड़े हैं, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हाल चाल है, ये लड़की बड़ी अनजानी है, हाय माय नेम इज, इन्होंने क्या लिखा है, शहादीन। हेलो हेलो, हाय हाय, ये लड़की है दीवानी, कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गाना। आनंद जी कैसे हाल चाल है, रीना वंश रुचि शिका गुप्ता लाइन पर मंझोला से मैसेज कर रहे हैं। रिजवान खान साहब जुड़ गए हैं मेरे साथ आज की सुबह ग्राम बीजना से सही जवाब के साथ। गुड मॉर्निंग प्रिय मित्र आनंद जी, नमस्कार। नॉनेज जी आपको भी नमस्कार। गौरव फीलर जी जुड़े हैं नवीन नगर मुरादाबाद से, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इनको हमारे प्रोग्राम और गीत संगीत। ये महराज दीन जुड़े हैं कश्मीर से, रिहाना जुड़ी हैं रानी नांगल से, योगेंद्र जी जुड़ चुके हैं, भूपी शर्मा जी जुड़े हैं, निसार अली सलमानी तो मड़िया कला मुरादाबाद से मैसेज करते हैं। हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। सभी सुनने वालों के लिए वेरी गुड मॉर्निंग और प्यार भरा सलाम लिखते हैं। आपके लिए कुछ खास है, कुछ लोग सिर्फ बात नहीं करते हैं, दिलों पर असर छोड़ जाते हैं, हंसते हुए लफ्जों के पीछे अपने जैसे प्यार छोड़ जाते हैं, हर सुबह जिनकी आवाज से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है वो कोई और नहीं, आरजे आनंद जी आपकी पहचान कहलाती है। अरे वाह ब्यूटीफुल साहब। रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं आता है, मैं दिल से पूछा क्या यही प्यार है, तो दिल ने भी कहा हाँ यही प्यार नहीं है पाजी, ये गर्मी का एहसास है। वाह वाह वाह। आनंद सर जी गुड मॉर्निंग, सना नाजिया मेरे साथ कनेक्ट होती हैं आज की सुबह, छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी लिखते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल, आज सुबह सुबह आपके साथ रीना जी को ऑफिस में सुना, बहुत अच्छा लगा, बी पॉजिटिव। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, आज की सुबह आप जुड़े मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो है आपसे लेते हैं जाने की इजाज़त, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो ऐसे ही बजाते रहिए। कुछ संदेश पहुंचे थे मेरे पास, नमस्कार कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग। आशु जी ने मुझे मैसेज किया था, हाय गुड मॉर्निंग मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग आपको भी। प्रीति सक्सेना जी मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह टेक्स्ट मैसेज के जरिए, हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, और मैं आपको गुड मॉर्निंग करना चाहती हूँ। अमरीन जी थैंक यू सो मच लाइन पर से जुड़े। अजय जी का मैसेज पहुंच गया था आज की सुबह, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और एक व्हाट्सएप पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया। चलिए गाइस कल मिलते हैं, अभी के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, आप ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना रेडियो, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय।

0: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मंडे की सुबह है और देखिए दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी हंगामा से शान, और साथ में साधना सरगम जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना। चैन तो हमें तभी मिलता है जब हम आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और हमें भी पूरा यकीन है कि आपको भी अच्छा लगता होगा जब खुशी यहाँ पर

सुबह है और दोस्तों आज बहुत खास दिन भी है। मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या स्पेशल है। दोस्तों सोमवार के पावन सुबह अपने साथ शिव भक्ति की अद्भुत ऊर्जा लेकर आई है और आज का दिन और भी खास क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज मनाया जा रहा है सोमनाथ प्राण प्रतिष्ठा दिवस। कहते हैं जहाँ शिव का वास होता है वहाँ मन को शांति, जीवन को शांति शक्ति और रिश्तों को नई रोशनी मिलती है। समुद्र की लहरों के बीच विराजमान सोमनाथ महादेव केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की पहचान है। तो इस शुभ अवसर पर आइए अपने मन से हर नकारात्मकता को दूर करें, भोलेनाथ का स्मरण करें और प्रार्थना करें। महादेव जी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सफलता का उजाला भर दे, हम तो यही कामना करते हैं। और आप सभी श्रोताओं को सोमनाथ प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और करते हैं शो की शुरुआत एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है एंड फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से मैंने ये खूबसूरत सा ट्रैक आज की मॉर्निंग चुना है अमित त्रिवेदी जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। तो इसको एंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफ एम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर ट्वेल्थ के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
3: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है 10:32 मंडे की सुबह। बहुत ज्यादा गर्मी है एवरीवन, प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो सर ढककर ही घर से बाहर जाइएगा। धूप बहुत तेज है एंड पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें और पानी पीते रहें। अपना अच्छे से ध्यान रखें, बेवजह अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं। अगर कोई काम है तो केयरफुली जाइएगा, क्योंकि स्वस्थ अगर आप रहेंगे तभी आप हर चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे एवरीवन। तो काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं एंड दोस्तों, आज का दिन मैं आपको बताती हूँ सपनों खोजो और नई सोच को समर्पित है, जिन्होंने भारत को तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में नई पहचान दी है। आज मनाया जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी वो दिन हमें याद दिलाता है, आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि तकनीकी सिर्फ मशीनें तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने की ताकत भी है। आज भारत अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डिजिटल इंडिया, मेडिकल साइंस और नई रिसर्च तक हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ दिन रात मेहनत करके देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। सोचिए एवरीवन, एक समय था जब बड़ी बड़ी तकनीकें केवल सपनों जैसी लगती थी और आज मोबाइल की एक छोटी सी स्क्रीन पर पूरी दुनिया हमारे हाथों में होती है। तो दोस्तों, आज के दिन हमें उन सभी वैज्ञानिकों को, तकनीकी को और विशेषज्ञों को दिल से धन्यवाद कहें जिनकी मेहनत ने हमारे जीवन को और आसान एंड तेज और स्मार्ट बनाया है। नई सोच ही नए भारत की असली पहचान है। आप सभी को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और एक दिलचस्प सवाल आपसे पूछते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आज की सुबह, एंड हम जिस शहर में रहते हैं उससे जुड़ी बातें जानना भी कितना दिलचस्प होते हैं ना। तो आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कि मुरादाबाद के इतिहास से जुड़ा एक बेहद ख़ास सवाल। देखो, मैं आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछने वाली हूँ और हम भी देखते हैं कि हमारे मुरादाबाद वाले कितने इंटेलिजेंट हैं और कितना कुछ जानते हैं अपने शहर के बारे में। तो चलिए पूछ लेते हैं आपसे सवाल बिना किसी देरी के। दोस्तों, आप मुझे बताइएगा, हम अपने श्रोताओं से पूछना चाहते हैं, अपने शहर के इतिहास को अच्छी तरह आप जानते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस सवाल का जवाब जल्दी दे पाएंगे। एंड सवाल मेरा यह है आपसे दोस्तों कि इतिहास की बात करें तो मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप मुझे बताइए, मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैं आपको चार ऑप्शन दे रही हूँ, आप उसका रिप्लाई मुझे दीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो आंसर मुझे दीजिएगा। पहला ऑप्शन ए है पीतल नगरी, ऑप्शन बी है चौपाला, ऑप्शन सी है राम गंगानगर, ऑप्शन बी नवाबपुर। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, कौन से ऑप्शन सही है? मुरादाबाद को पहले इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? आप मुझे बताइएगा। मुरादाबादीज, आज आपका टेस्ट ले रहे हो। वैसे हमें पता है कि आप जवाब दे देंगे क्योंकि हमारे जो श्रोता है ना वो बहुत स्मार्ट हैं। तो फटाफट से अपने जवाब पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और यहाँ पर खूबसूरत संदेश आए हैं तो उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैडम जी, कैसी हैं आप? मैडम तो हमेशा खुश रहती हैं और स्वस्थ भी हैं, उम्मीद करते हैं अभी अच्छे ही होंगे। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जामा मस्जिद तकवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान जी, और साथ में इनकी मिसेज भी हैं निखत परवीन, इनका बेटा भी है मोहम्मद रूहान खान, एंड गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रिय आरजी जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनोरी तिलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया यान बाबू, और कहते हैं कि लाजवाब प्रस्तुति है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है छत्तीसगढ़ से,
बबलू साहू जी का, और ये भी कार्यक्रम में तशरीफ लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना संदेश आपने पहुंचाया है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी जी का, साथ में इनके साथ इनके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं महाराज जहाँ भी हैं, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी नमस्कार आदाब दोस्तों। अब जल्दी जल्दी से आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, बिना किसी देरी के हम आपके मैसेजों का, आपके संदेशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और एक और खूबसूरत सा गाना आपको सुनवाते हैं आज की सुबह, जिस पर आपका मन तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी मन नहीं करता डांस करने का, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज की सुबह खुशी वही काम कर रही है आपको थोड़ा सा थिरकाने का। एक गाना बहुत प्यारा है, अगर आपको डांस नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, अनुष्का जी स्टेप आपको बता रही हैं कैसे कैसे आपको करना है, वैसे वैसे करते रहिए, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखिए और ये गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और

0: वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
1: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: टायर लो, सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने टाइटल ट्रैक सुना, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। और दोस्तों, एक्चुअली ना कभी कभी दिल सच में इतना मासूम होता है ना, ना वक्त देखता है ना वजह, बस किसी की मुस्कान, किसी की बातें और किसी की यादों में खो जाता है। और अगर दिल में प्यार, अपनापन और सच्चे रिश्तों की गर्माहट हो तो ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है, इसी प्यारे से एहसास के साथ। और करते हैं शो की शुरुआत। मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एंड मैं आपसे जानना भी चाहती हूँ दोस्तों, हम जिस शहर में रहते हैं उससे जुड़ी बातें भी जानना कितना दिलचस्प होता है ना एवरीवन। तो आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ मुरादाबाद के इतिहास से जुड़ा एक बेहद खास सवाल। देखते हैं आखिर हमारे कितने श्रोता अपने शहर के इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। एंड इतिहास की बातें करें तो दोस्तों, मुरादाबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ और आप मुझे राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है पीतल नगरी, ऑप्शन बी है चौपाला, ऑप्शन सी है रामगंगानगर, ऑप्शन बी है नवाबपुर। अब आप मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या है पहले इतिहास के समय में। जी हाँ, इतिहास की अगर बात कर रहे हैं हम, तो बताइएगा मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता था। आप अपना राइट आंसर पहुँचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837898896। एंड आपको क्या लगता है सही उत्तर कौन सा हो सकता है? जल्दी जल्दी से जवाब दो। ओहो, इतना मत सोचो हमारे श्रोता। देखिए, मैं जानती हूँ आपको पता है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि कौन सा हो सकता है। जो आपको सही लगता है वो जवाब पहुँचाएगा, फिर हम आपको बताएंगे राइट आंसर क्या है। एंड कुछ श्रोताओं को पता भी है वो बताएंगे, और कुछ अभी कंफ्यूज हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जल्दी जल्दी से अपने आंसर हमें पहुँचाइए। एंड कुछ और यहाँ पर संदेश आए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। मैं आपके साथ आपकी खुशी हूँ। हाँ, मुस्कुराओ अब आप। देखिए, मुस्कुराते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं आप। एंड हमारे पास यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, और ये मैसेज हमारे पास आए हैं। आदरणीय प्रसारण जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। एंड मोहम्मद यासीन अनजान जी, साइमा नवाज, हसन नवाज, एंड इन्होंने अपनी पूरी फैमिली के नाम यहाँ पर शामिल किए हैं। और कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम लाइव ऐप के माध्यम से सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का। और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगला मैसेज हमारे पास कश्मीर से आया है मनाजुद्दीन जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? एंड मॉर्निंग मसाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच सर। कोई तो है जिस हमारा स्वागत किया। हमारे जो दोस्त हैं ना, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो हमारा वेलकम इंतज़ार तो करते हैं पर हमारा वेलकम नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि खुशी आई है उनका भी हम भी वेलकम करें। इसे मजाक कर रही हूँ दोस्तों, आपके संदेश यहाँ पर आते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी, मेरा तो दिन बन जाता है। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अयूब जी रामपुर से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं जय श्री राम खुशी मैम, आपको भी जय श्री राम। आपके कार्यक्रम एंड आप जो जानकारियाँ देती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं यहाँ पर कि सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, जो समय आपके पास है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसका सही यूटिलाइज करो। हाँ, मैं यही कह रही हूँ आपको, सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय आपके पास है वो दोबारा नहीं आने वाला है। तो जो वक्त आपके पास है उसको अच्छे से बिताइए, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, एंड जो कुछ अच्छा अगर आप करना चाहते हैं तो करो, क्योंकि आप अगर कल पर टाल दोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो अभी वक्त है अभी से शुरुआत करो, तभी तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे ना। देखो ये यहाँ पर कहते हैं सर, आंसर भी दे रहे हैं लेकिन हम अभी आंसर नहीं बताएंगे एवरीवन, थोड़ा सा सस्पेंस बना कर रखेंगे। फटाफट से अगर बता देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। इंतज़ार का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतज़ार करो, सब्र करो।
लौट कर आती हूँ प्यारे से गाने के उस पार। तब तक के लिए आप भी मुझे मैसेज पहुंचाइएगा, नंबर 9837896896। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है आप सभी के लिए, बहुत ही खूबसूरत सा, एंड जब आप इसको सुनेंगे ना, तो सच में अभी जो हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, समय की बात कर रहे हैं, वो ही ये गाना दर्शा रहा है कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। बहुत ही प्यारा सा गाना है, इसको एंजॉय करिए आप। लौट कर आती हूँ।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यवसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। यह है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:07। बहुत ही खूबसूरत सा अभी आपने ट्रैक एंजॉय किया, टाइटल ट्रैक कल हो ना हो। एंड दोस्तों, अभी जो खूबसूरत ट्रैक आपने सुना है ना, कल हो ना हो, और वाकई जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है कि जिंदगी धूप भी है, छांव भी है, खुशियां भी हैं और कुछ अधूरे एहसास भी हैं। इसीलिए हर पल को मुस्कुराकर जी लीजिएगा, क्योंकि अपने वाला कल कैसा होगा, आने वाला कल कैसा होगा, किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर पल ना खुश रहा करो, मुस्कुराया करो। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जब आप मुस्कुराएंगे तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली प्यारी हो जाएगी। लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो क्या होगा, लाइफ को जीने में मज़ा नहीं आएगा, आपको ज़िंदगी ना बोरिंग लगने लगेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को अगर खूबसूरती के साथ बिताना है ना, खूबसूरती के साथ आपको ज़िंदगी को जीना है, हर एक पल को महसूस करना है, तो उसके लिए आपको मुस्कुराना होगा। क्योंकि मुस्कुराने अपने आप में एक खूबसूरत एहसास है, एक खूबसूरत कह सकते हैं कि ज़िंदगी को जीने का नज़रिया है। और आपकी मुस्कुराहट किसी उदास चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है, इसलिए मुस्कुराते रहा कीजिए। हाँ, खुशी भी बार बार यही कहती है। और देखिए, मैं खुद मुस्कुराती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी, सुनने वाले सभी मुस्कुराएं। और कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, उनको भी जल्दी से शामिल करते हैं।

0: और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया हुआ है ईद का मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सुबह सुबह इतने सारे श्रोता हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती है और हमारे हालचाल जान रही हैं। तो बताते हैं जी, हम आपको, हम बहुत ही अच्छे हैं, खुश हैं, और आप भी खुश रहा करो, स्वस्थ रहो, अपना अच्छे से ख्याल भी रखो, ठीक है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर गुड मॉर्निंग हमें विश करते हैं, ये पहुँचाते हैं अहमदनगर छपर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी, साथ में इरशाद अंसारी जी हैं और शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, कहते हैं कि गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, कल आपने मदर्स डे स्पेशल शो किया, हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली ठीक नहीं है, आपके जवाब में थोड़ा सा गड़बड़ है सर, एंड बैक टू बैक आप सभी के आंसर आ रहे हैं, दिल से शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, और कहते हैं खुशी जी आप अपनी पसंद से कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, एंड हम सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर मैम को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, और आपने जो पूछा है इतिहास में पहले मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता था, तो इनका राइट आंसर हमारे पास आया है चौपाला, एग्जैक्टली राइट आंसर आपने दिया है सर, मुरादाबाद का पहला नाम चौपाला था, और इसके बाद मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाने लगा, मतलब नाम को पहचान, इस मुरादाबाद को मुरादाबाद के नाम से जानने लगे सारे लोग, पीतल नगरी के नाम से विरासत का यहाँ पर काम होता है, और देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है हमारा मुरादाबाद। एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मोहम्मद हनीफ पंचायत कला अमरोहा से, और ये कहते हैं कि मैम आपने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा, हमने कितना इंतज़ार किया, देखिए सर अभी आपको मैसेज हमने शामिल कर लिया, आप खुश हो जाइए आप। और चलिए श्रोताओं एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, एंड लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना, आप सब इंजॉय कीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस।
1: कुछ बोलोगे जी, कैसे गाइड हो?
2: मेरी समझ में नहीं आया, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हकीमत चीज़।
1: क्यों क्यों

0: Hey everyone, good morning. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी आपके साथ है. और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा सत्विन जी की आवाज़ में ट्रैक सुना. बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया, मेरे सीने से दिल लापता हो गया. बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और आप सब ने इंजॉय किया होगा ये हम उम्मीद करते हैं. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पर वक्त हुआ है 11:21 और मैं आपके साथ आपकी खुशी. और हमारे पास बैक टू बैक आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं तो उनको जल्दी से हम शामिल करते हैं. एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रवि सैनी जी का. और सर आपने जो आंसर दिया है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. एक्चुअली राइट आंसर है चौपाला और आपने आंसर दिया है पीतल नगरी. तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बट थैंक यू सो मच, आपने अपना जवाब पहुंचाया. कोशिश तो की. और कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, गलतियों से भी हमें सीखने को मिलता है. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर रामपुर से आया है. ये कहते हैं कि मैम गर्मी बहुत ज्यादा है तो एक कूल सा गाना सुनवा दीजिएगा. ओके थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुंचाने के लिए. अगला मैसेज हमारे पास आया है आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शरीक अली जी का. और ये गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. एंड साथ में इनकी फ्रेंड भी है शाद अंसारी जी. और राइट आंसर के साथ जुड़े हैं गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से. कहते हैं खुशी जी मुरादाबाद का नाम पहले पुराने इतिहास में चौपाला के नाम से जाना जाता था. एग्जैक्टली थैंक यू सो मच अपना राइट आंसर पहुंचाने के लिए. दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर. आप हैं पक्के मुरादाबादी. आपने ये साबित कर दिया है. और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप सोनू कश्यप जी का. और ये भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल जी का. एंड ये भी अपनी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं और कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, एक प्यारा सा वॉइस नोट आया है तो उसको जल्दी से हम सुन लेते हैं. एंड क्या पहुँचाती है हमारी प्यारी सी लिसनर. बिना किसी देरी के सुनते हैं उनकी दिल की आवाज़ उन्हीं की ज़ुबानी.
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अलीना खान रहमत नगर से बोल रही हूँ. मैम आप बहुत अच्छी प्रस्तुति देती है और मैम आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, बहुत फाइन है. मैम आपने जो सवाल पूछा है उसका राइट आंसर है चौपाला.
0: एग्जैक्टली डियर, थैंक यू सो मच, आपने राइट आंसर हमें पहुंचाया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मीठी है. एंड थैंक यू. मैं भी आपसे यही कहती हूँ अपने श्रोताओं से जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त कि

0: अभी अपनी आवाज में कुछ पहुंचाया करो, इतना मत शर्माया करो। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से, और सभी हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब अपने कामों में व्यस्त हैं, कुछ अभी शॉपर सुन रहे हैं तो कुछ अभी हमारी जो फीमेल्स मैम हमें सुन रही हैं वो किचन में हैं और खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बनेगा, समझ नहीं पा रहे हैं हम आज। रेगुलर का यही रहता है कि कल क्या बनेगा खाने में, और जब आज होता है तो सुबह सुबह सभी से पहला यही डिस्कशन होता है फैमिली में कि क्या बनेगा बताओ। एंड क्योंकि क्या होता है ना, सबकी फरमाइशें अलग अलग होती हैं, किसी को ग्रीन सब्जी पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को दाल पसंद है तो किसी को कुछ और पसंद है। सबकी चॉइस के बारे में फाइनली सबसे मालूम करके तब एक चीज़ डिसाइड होती है कि खाने में फाइनली आज ये बनने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है ना वो फीमेल्स को होती है, क्योंकि फीमेल्स से खाना बनाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, और इतनी गर्मी में किचन में खाना बनाना अपने आप में कोई कॉम्पिटिशन से कम नहीं होता है, बहुत बड़ा टास्क है इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना बनाना। लाइक मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है। एंड जो हमारी फीमेल्स हमें सुन रही हैं, हम तो उनको कहना चाहेंगे, दिल से सल्यूट करते हैं कि आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो मैम। तो हमारी जो सुपर वुमेनिया है ना, जो इस समय में सुन रही है, हमारी प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल वुमेन, तो उनके लिए भी एक शानदार सा गाना हम यहाँ पर प्ले करेंगे, तो आप इंजॉय कीजिएगा। बस लौट कर आते हैं हम प्यारे सी गानों के उस पार, आप कहीं मत जाइए, दिल से मुस्कुराइए, खुशी कहती है, अपना अच्छे से ख्याल भी रखिएगा।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
6: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
5: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
6: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ,
9: चावला टायर
7: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
12: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
13: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
14: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
15: कॉल 8826213131।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आरजी खुशी करती है पूरे दिल से। जी हाँ, आपके अपने पहले फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी यहाँ पर समय हुआ है 11:37 एंड ये खूबसूरत से गाना आपने इंजॉय किया। और अभी बारी है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज की, जो भी सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, उन्होंने राइट आंसर दिया है, हमारे एक लिसनर हैं लेकिन नाम नहीं लिखा, चौपाला। एग्जैक्टली, पहले मुरादाबाद को ऐतिहासिक समय में चौपाला के नाम से जाना जाता था, जो कि अब मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ब्रास की नगरी है ये। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं मुरादाबाद थाना नागफनी से रीना, अच्छा रीना जी का मैसेज हमारे पास आया है। और ये कहती हैं, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ मैम। इन्होंने आंसर जो दिया है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट पूरी कोशिश की है मैम ने सही आंसर देने की। अगला मैसेज हमारे पास आया है मोनिका कश्यप जी का, विकास नगर से, कहती हैं, राधे राधे खुशी जी, कैसी हैं आप? राधे राधे आपको भी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच मैम, ये तो आप सबका प्यार है। और उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, उमेश कुमार प्रजापति जी का, लोधीपुर मुरादाबाद से, कहते हैं, खुशी जी हेलो, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। ये कहते हैं कि मैम आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। साथ में इनके दोस्त पे हैं तरुण कुमार, दिलीप कुमार एंड सनी। ओके, अपने दोस्तों के नाम भी लिखे हैं इन्होंने। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है एंड ये थैंक यू पहुँचाती हैं, थैंक यू सो मच, आपने अपना मैसेज पहुँचाया उसके लिए। और आपने थैंक यू पहुँचाया है, हम मोस्ट वेलकम आपको कहते हैं। और देखिए, आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा अनमोल और सबसे प्यारा तोहफा है। दिल से शुक्रिया मैं आपका कहना चाहूँगी। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और किसी भी गीत में आप शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, खुशी मैडम जी को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं चंदन। अच्छा, ये मैसेज हमारे पास आया चांद मोहम्मद जी का, लाल मस्जिद मुरादाबाद से,

और यहाँ पर इरशाद जी अपना राइट आंसर के साथ हमारे साथ फिर से कनेक्ट हुए हैं और सही जवाब इन्होंने पहुँचाया है। कहते हैं मुरादाबाद की असली पहचान एक पीतल की चमक और पीतल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रास सिटी एक बहुत ही बड़ी पहचान है मुरादाबाद, जिसे देश में ही नहीं विदेशों में भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन राइट आंसर सर, पुराना गर्म इतिहास की बात करें तो चौपाला के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता था। एंड बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब दिया है और थैंक यू सो मच, आपने भी पूरी कोशिश की है राइट आंसर की, पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है आपकी भी। तो चलिए दोस्तों, एक और खूबसूरत से यहाँ पर गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर से आपसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ और बातें हैं जो आपसे अभी साझा करनी है, अभी अधूरी रह गई हैं तो उनको भी हम कम्प्लीट करेंगे। लेकिन पहले गाना भी सुनवा देते हैं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
0: कॉल 8826213131।
8: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
12: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत आरजे खुशी स्वागत करती है। जी हाँ, आप ही के फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और हम यहाँ पर खूबसूरत मैसेज शामिल कर रहे हैं जो आप सभी के आए हैं, आपने इतने प्रेम से भेजे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक खूबसूरत सा यहाँ पर हमारे पास सर ने खुद खूबसूरती से लिखकर भेजा है। एंड मदर्स डे स्पेशल, कल मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया एंड बहुत ही अच्छे से मनाया हम लोगों ने। और हमारे यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी सुपर वुमेन यहाँ पर आई, हमारे सुपर मदर्स हमारे स्टूडियो आई एंड बहुत ही ज़्यादा सुबह से हमारा वो सिलसिला चल रहा था और नई नई मॉम से हमें मिलने का मौका मिला एंड उनकी जर्नी के बारे में जाना और कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, लाइक टीचिंग भी करना और उसके अलावा कुछ हाउसवाइफ हैं एंड कुछ वर्किंग थी, तो सभी से बातचीत की। सभी का अनुभव अलग अलग था लेकिन कुल मिलाकर बहुत ही अल्टीमेट था, बहुत ही खूबसूरत था। और सलाम करते हैं हम उनके जज्बे को। और यहाँ पर कुछ लाइनें भेजी हैं हमें शफी अहमद जी ने, कहते हैं कि मम्मी हमारे घर की शान है, उनके बिना जिंदगी अधूरी है, मम्मी में बसी है सबकी जान, रखती हैं हमारा ख्याल, उनके कंधों पर घर की जिम्मेदारी है, फिर भी वो करती हमसे प्यार, जिम्मेदारी है लाखों सामने चलता है सब उन्हीं से परिवार, रखना हमेशा उनका ख्याल, करना हमेशा उनकी इज्जत, मम्मी हमारी घर की शान, उनके बिना जिंदगी बेरान। और ये खूबसूरत सा मदर्स डे स्पेशल इन्होंने यहाँ पर वो अपना ये नोट उन्होंने लिखा था, लेकिन सर आपको कल भेजना था, बट कोई बात नहीं, आपने आज भी भेजा, हमें अच्छा लगा। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने इतना लवली सा, इतना प्यारा सा मैसेज हमें पहुँचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, बस जय श्री राम पहुँचाया है, बट आप अपना नाम भी लिख देते तो अच्छा लगता। एंड कुछ और भी यहाँ पर हम आपको बता रहे थे ना कि साथियों हमें इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं पूरे परिवार को अपने प्यार से जोड़कर रखती हैं, और जब वही प्यार किसी तस्वीर में झलक जाए तो वो पल सीधे दिल को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर भी एक बेहद प्यारी तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी के साथ खूबसूरत पल बिताते हुए नज़र आ रही हैं। और इस खास मौके पर एंड उनके पति जी ने, निक जोनस जी ने एक बहुत ही खूबसूरत दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है, और उन्होंने लिखा है, तुम वो ताकत हो जो हमें उड़ने का हौसला देती हो, कितनी खूबसूरत एहसास है ना दोस्तों। देखिए उन्होंने कितना प्यारा सा नोट लिखा है, तुम वो ताकत हो जो हमें उड़ने का हौसला देती हो। और ये खूबसूरत लाइन उनके हस्बैंड निक जोनस जी ने उनके लिए लिखी है। और ये जो पोस्ट है ना, जो ये फोटो अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और फैंस के दिलों पर ये राज कर रहा है, लाइक सबको बहुत ही क्यूट और बहुत इमोशनल भी लग रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने हर छोटे छोटे मोमेंट को ना आप कैमरे में भी कैप्चर करके रखो और दिल में भी बसा कर रखो।

तो चलिए दोस्तों, मैं सुनवाती हूँ आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना। खुशी आपसे कहती है दिल से है मुस्कुराना, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12 बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया सीट बेल्ट ज़रूर बांध दीजिएगा, और जो टू व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, और हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी आप ड्राइविंग ना करें। एंड खुशी यही कहेगी कि हेलमेट पहनना बिल्कुल भी ना भूलें, जब आप घर से जाते हैं तो हेलमेट ज़रूर अपने घर से ही लगाकर आप ड्राइव करें, लगा कर ही जाएं, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों, ड्राइव करते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी ना करें, और क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। तेज़ रफ्तार से बचें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें और ओवरटेक हमेशा सोच समझ कर करें। और हाँ, अगर नींद या थकान महसूस हो रही हो तो थोड़ी देर रुककर आराम जरूर कीजिए। इन चीजों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, मुस्कुराते रहिए। एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज को सुनते रहिए और यह है आपके शहर का अपना पहला रेडियो जहां पर आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी सुनते हैं। और एक और खूबसूरत से यहाँ पर मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं, मैम आपको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और कहती हैं कि आज मेरी भैया भाभी जी की शादी की सालगिरह है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। एंड मैम, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी भैया भाभी जी को। और एक प्यारा सा ट्रैक हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं हमारी पूरी एफएम की टीम की ओर से। वो हमेशा ऐसे ही खुश रहें और साथ रहें, एंड और क्या कहें, बाकी बस हमेशा हैप्पी रहें एंड स्वस्थ रहें, हम तो यही कामना करते हैं। और एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत उनके लिए एंड हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच ललिता मैम, आपने अपना संदेश हमें पहुंचाया है। तो चलिए दोस्तों, ये प्यारे से गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी आपको 3 से 5, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना एंड पानी भी पीते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
4: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: माँ की नज़र फिर से साफ हो, पापा बिना चश्मे अखबार पढ़ सकें, बच्चों को कम उम्र में चश्मा ना लगे, यही तो ख्वाहिश है हर परिवार की। तो आँखों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आज ही आए बजाज आई हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर आकाश बजाज और डॉक्टर अशोक बजाज लाते हैं आधुनिक मोतियाबिंद सर्जरी और नेत्र रोगों का विशेषज्ञ इलाज। हॉस्पिटल का पता ताड़ीखाना चौराहा मुरादाबाद, कॉन्टैक्ट 9548088900।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। FM मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी।

0: कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
1: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं, गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
2: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
1: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
0: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
1: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कह रहे कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
2: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
0: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है, वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
0: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
1: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
0: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए, तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
1: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाता। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहां अफवाह और तेज लगती है।
0: घर में यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
1: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स को दी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
2: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
0: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
1: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
0: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
1: यही तो रोकथाम है, टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी

0: से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया, जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे की आबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
2: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
2: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
0: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
2: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
0: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
1: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है।

0: तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
1: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
0: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
1: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
0: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
1: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
0: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी तुम्हारे पास प्रमाण क्या है।
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत, यानी सिर्फ टीका नहीं पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
0: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी हो।
2: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
0: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर, इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही, लाभ कई, सच में घर तक पहुँचे।
2: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई है जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ है। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं।

0: बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

0: दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर नारक

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना ही होना सही इलाज के लिए वादा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है, यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: यह बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं अगर यह बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते, पर हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्चा डराता है।
2: और यही कारण होता है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे, गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो UVN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UVN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
2: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए, छाटने के लिए नहीं।
0: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है, ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षात्कार करें।
1: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है, अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दो गुना हो जाता है।
0: और यही एक भी सीख है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
2: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें।
1: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का आधार नहीं।
1: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा समझ नहीं तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहाँ सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहाँ किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगा, किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है, अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए

0: मुफ्त है, तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछे कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UWIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
0: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
1: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है, लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
1: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नहीं अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे, वे हमेशा कहती हैं हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
1: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है, महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
1: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ कही, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो UWIN पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
0: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
0: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
0: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
4: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
5: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
4: अरे वाह।
5: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
4: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
6: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
7: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
6: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो, लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
7: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
6: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो, लेकिन जैसे माइक ऑन बटन ऑन, आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले लिया है हमने थोड़े टाइम के लिए, करेक्ट?
7: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
6: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो प्रोग्राम में, मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से वेलकम बैक करते हैं आपका। मैं आनंद और मेरे साथ है कुमकुम। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। सोच तो हमारी बदलेगी दोस्तों, जब हम प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को बदलने का तो सोच तो बदल ही जाएगी। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दोस्तों आज हर हाथ में मोबाइल है लेकिन क्या दिलों में दूरी बढ़ रही है। घर में सब साथ बैठते हैं लेकिन बातें कम और स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है। तो आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं यानी आनंद और मेरे साथ कौन है जी?
1: कुमकुम, आप सभी की प्यारी दोस्त
0: जी। तो कुमकुम बताओ जरा, अभी जैसे मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि आजकल जो है ना हर घर में हर हाथ में मोबाइल है और साथ में बैठे हैं फिर भी दिलों में दूरियां हैं, उसका रीजन मोबाइल ही है क्या?
1: हाँ जी राइट। हमारे बीच बातचीत कम हो चुकी है, सास बैठी है, ससुर बैठे हैं या मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे से बातें करने की जगह अपने फोन में घुसे रहते हैं, जिससे लोग देखते हैं कि हाँ एक साथ होने के बाद भी, एक कमरे में होने के बाद भी आपस में एक फोन की वजह से कितनी दूरियां हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों सही कहा कुमकुम जी ने, और ये मुझे लगता है कि हर घर की कहानी हो गया है मोबाइल। मोबाइल जब से आया है ना बहुत सारे फायदे तो हुए हैं मोबाइल आने के, बट कहीं ना कहीं जो रिश्तों में गर्मियां थी, जो अपनेपन का एक एहसास था, वो भी कम हुआ है। और आज इसी प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे इस मोबाइल से और रिश्तों में जो एक दूरियां बनी है मोबाइल की आने की वजह से, क्या सच में ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है? क्या सही में मोबाइल आने से हमारे आपस के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहे हैं? इसी पर मैं और कुमकुम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, आप सुनते हैं जिसे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पर, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक परिवार था, मम्मी खाना बना रही थी, पापा ऑफिस के काम में मोबाइल पर व्यस्त थे, बेटा गेम खेल रहा था और बेटी रील देख रही थी। दादी ने कहा अरे कोई 5 मिनट भी मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक से कुछ देर बाद घर की बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी और तब सब एक दूसरे से बात करने लगे। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई और दादी मुस्कुराकर बोली देखो असली नेटवर्क तो दिलों का होता है। जी हाँ श्रोताओं, तो ये कहानी नहीं है, दरअसल ये हमारे और आपके जीवन की एक सच्ची घटना है। और आज सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए मैं और कुमकुम जी आपसे इसी विषय पर बात कर रहे हैं। लगातार ये मोबाइल आने से बहुत सारे फायदे हुए हैं मेरे और आपके जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है हमारे रिश्तों पर। साथियों आप क्या सोचते हैं इन बातों से, आप जरूर हमें बताइएगा हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। हमारा इंस्टा हैंडल आपको मिलेगा रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं, या हमारी ऑफिशियल आईडी आप फॉलो करें FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। श्रोताओं आगे और भी बातचीत हम जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी कि एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद मैं और कुमकुम पुनः आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने सुना, सैयारा, बहुत प्यारा गाना है। और इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं।

0: मोबाइल है तो फिर हमें अपनी सोच बिल्कुल बदलना चाहिए। वैसे कुमकुम आपका क्या मानना है, क्या सच में मोबाइल हो सकता है रिश्तों की दूरियों की वजह?
1: हाँ जी जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हम एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद भी आपस में बातें ना करके आपस में टाइम ना दे के हम मोबाइल चलाएं तो वो हमारी रिश्तों में दूरी ही लाता है। आनंद आप खुद ही सोचिए जरा, क्या आपने भी कभी परिवार के साथ बैठकर मोबाइल का उपयोग किया है, मोबाइल को समय दिया है?
0: अच्छा ओके मतलब कुमकुम मुझसे ये पूछना चाह रही है कि क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल किया है? करेक्ट, देखिए मोबाइल का इस्तेमाल तो ऑफकोर्स करते हैं यार, क्योंकि आजकल ना 95% जो काम हो गए हैं ना सब मोबाइल पे हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सारी चीजें डिजिटली प्लान हो गई हैं, सो ऑलमोस्ट हर एक चीज हर बंदा मोबाइल से ही सर्वाइव कर रहा है, नो डाउट। बट सी अगर हम परिवार के साथ हम लंच पे हैं, डिनर पे हैं या ब्रेकफास्ट पे हैं, जब हम किसी और मीटिंग के लिए बैठे हैं अपने परिवार के साथ, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परिवार के साथ हैं तो फिर हमें परिवार को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने का जो टाइम है ना वो एक अलग सेट कर सकते हैं हम, बस यही सोच बदलनी है श्रोताओं हमें। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसका एक पैरामीटर सेट करो कि आपने कब मोबाइल देखना है। और मैं तो कहता हूं अगर आप देख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके परिवार के साथ बैठना है तो अपने परिवार के साथ बैठ के अच्छी अच्छी चीजों पर आप बात कर सकते हो, बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। और आजकल मोबाइल के आने से एक चीज तो है यार जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो अपने लोग हैं ना, मतलब एक ही फैमिली में 10 लोग हैं, अपने अपने रूम में बैठे हैं, मम्मी को अगर आवाज लगानी है तो वो अब व्हाट्सएप करके बोलती हैं, बेटा नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है, बेटा लंच रेडी है नीचे आ जाओ। एक टाइम था जब हमारी माँ किचन से आवाजें मारा करती थी और हम भागे चले आते थे। मान लीजिए श्रोताओं, या कुमकुम आप ही मान लो, अगर एक दिन के लिए फोन बंद हो जाए तो आप अपने दिन को कैसे सेलिब्रेट करोगे, क्या करना चाहोगी? अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा फोन बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल हम बिल्कुल फ्लैश बैक में चले जाएं, एकदम पुराने जमाने में, तो आप क्या करोगी अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
1: पहले कुछ टाइम के लिए तो सोचूंगी कि ये क्या हो गया, हाँ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है,
0: क्योंकि एक तो एक्चुअली ना हमारी हैबिट हो गई है,
1: हैबिट हो गई है। और ऊपर से हमारी छोटी छोटी चीजें, सुबह को उठ के सबसे पहले फोन देखना और बाकी चीजें कॉन्टेक्ट करना, आज किस काम में क्या है, सारी डिटेल्स हम फोन में रखने लगे हैं।
0: करेक्ट, और दूसरों की लाइफ भी ताका झांकी करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं ना कहीं, है ना,
1: तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम
0: 100%। अगर एक दिन के लिए फिर भी फोन बंद हो जाए सो प्लीज टेल अस, आप अपने दिन को कैसे बताओगे, मतलब क्या करना चाहोगे?
1: जैसे कि पुराने दिनों में कहा जाता था कि हाँ खेत के पास जाना चाहिए, पेड़ों की छांव में बैठना चाहिए, दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, तो मैं उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहूंगी।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर मुझे ये मौका मिलेगा सच में श्रोताओं, तो मैं तो अपनी नानी के घर भाग जाऊंगा अपना बैग पैक करके। मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे को नानी के घर पे जाना छुट्टियों में बड़ा अच्छा लगता था। आजकल तो खैर बड़ा जमाना डिफरेंट हो गया, नानी दादी के घर तो अब कोई जाना ही नहीं चाहता, सबको दिल्ली मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज में भागना है। आई नो दैट अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिलती है, लेकिन श्रोताओं रुकिए जरा, फिर से थमिए, सोच बदलने की जरूरत है, सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस जरूरत है एक चीज की, वो है मोबाइल से डिस्टेंस की। और सबसे जरूरी चीज पता है क्या है दोस्तों, भावना जी, आजकल जो मैं देखता हूं लोगों में, स्पेशली मम्मी पापा में ये चीज नोटिस करता हूँ मैं, जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, आई एम श्योर दोस्तों आप भी ये चीज नोटिस करते होंगे, नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा को बस में ट्रेन में डिस्टर्ब करते हैं तो ना मॉम डैड उन्हें चुप कराने के लिए सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं, और वो बच्चे मोबाइल पे वीडियो गेम देख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं क्या देख रहे हैं, फैमिली को पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं व्हाटएवर उन्हें करने दो, मतलब पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्टिल हम फ्री हो जाएं और बच्चे जो देख रहे हैं देखने दो। तो भाई मैं तो, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने खुद मम्मी पापा फोन चला रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा कि इवन कई बारी हम किसी किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं तो वहां मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए, बच्चा उसे परेशान ना करते, मम्मी खुद फोन का इस्तेमाल करने लगती है या बच्चों को पकड़ा देती है फोन। तो गाइज फोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, ये फोन ही है जो आपकी और मेरी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों का भी अंत कर रहा है ये मोबाइल। तो भैया मोबाइल फोन को चलाना है जरूरी, लेकिन डिस्टेंस के साथ मेंटेन करना भी जरूरी है। फिलहाल श्रोताओं बातचीत तो चलती रहेगी, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, हम पुनः लौटेंगे इस प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सोच बदलो प्रोग्राम आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। कुमकुम और आनंद के साथ आप बने हुए इस प्रोग्राम में, और बाकी अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से ऑफिशियल आईडी मिलती है, प्लीज फॉलो कीजिए, वहां पर आके आप बताइए आपको हमारे स्टेशन्स के प्रोग्राम कैसे लगते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। चलिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, उसके बाद फिर पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को सुन के वाकई में ही आनंद आ गया और मैं तो फ्लैश बैक में चला गया। आपको पता है कुमकुम, एक समय होता था जब लोग कहते थे अरे भाई चुप कर यार, कितना बोलेगा, और आज की डेट में लोग बोलते हैं अरे भाई कुछ तो बोल यार, चुप क्यों है, क्यों मोबाइल की दुनिया में घुसा रहता है हर टाइम, थोड़ी तो बात कर लिया कर, है ना। एक टाइम होता था जब मम्मी बोलती थी कितनी बकवास करता है, कभी तो शांति से चुप बैठ जाया कर, और आज की डेट वो है जब मम्मी बोलती है कि बेटा थोड़ी बातचीत तो कर लिया कर, क्या 24 घंटे फोन में ही लगा रहता है। कुछ कहना चाह रही थी हमारी दोस्त कुमकुम आपसे, और साथियों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो कुमकुम आप कुछ कह रही थी, कुछ बताने की बात कर रही थी।
1: मैं कुछ अपने श्रोताओं को प्रेरणादायक संदेश देना चाहूंगी।
0: प्रेरणादायक संदेश तो मैं भी लेना चाहूंगा।
1: या ऑफकोर्स, जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल हमारे लिए आजकल कितना जरूरी है, हर वर्क में यूज होता है, तो मोबाइल हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें खाना खाते समय मोबाइल को दूर रखना चाहिए, बच्चों से खुलकर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा घर में टाइम एक बार तो टाइम बनाना चाहिए पूरे दिन में, जो लिखा हो कि हाँ नो टाइम मोबाइल। याद रखिए रील्स कुछ सेकंड की खुशियां देती हैं, लेकिन आपके अपने लोग पूरी जिंदगी का सहारा बनते हैं।
0: तो क्या क्या बात है। हाँ तो आगे बोलो,
1: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आगे।
0: देखो कुमकुम, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही मीनिंगफुल, थॉटफुल वाली बातें रख दी हैं, थैंक यू सो मच। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ऐसी लगता है कि रील्स सिर्फ हमें थोड़ी देर की खुशी तो देती है, लेकिन एक्चुअली खुशी जो हमें मिलती है वो अपनी फैमिली के साथ बात करके, हमें अपने रिलेटिव के साथ बात करके मिलती है। दोस्तों वो कहते हैं ना, आजकल नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कोई अगर अपना बुलाए तो बस सिंपल सी आवाज निकलती है, अभी बिजी हूं बाद में आऊंगा। ये वाली बात तो 100% आपके साथ भी होती होगी। मोबाइल ने भाई सबका टाइम चुरा लिया है कुमकुम, पापा फोन पर, मम्मी रील्स पर, बच्चे गेम्स में, एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग दुनिया में व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं ये जो व्यस्तता है बहुत जरूरी है, लेकिन श्रोताओं सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें मोबाइल का भी इस्तेमाल करना है और हमें अपने परिवार को भी पूरा वैल्यूएबल टाइम देना है। उसके लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। सोच बदलने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जब आप अपने घर पर हो तो अपने फोन को थोड़ा साइड में रखें। अगर आपको पता है कि आप बेवजह का समय अपने फोन पर दे रहे हैं तो वही टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपने परिवार से बातचीत करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में ना जो रिश्तों में गर्माहट है वो बहुत जरूरी है। और रिश्ते कहीं ना कहीं आजकल इसलिए भी खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बातें तो फोन पे ही हो जाती हैं। थोड़ी सी देर में बात हुई, उसके बाद तुरंत डिलीट हो गई, अभी पता चला अभी नाराजगी थी, अभी ब्लॉक हो गई चीजें। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को ना एकदम से इन्होंने खेल बना के रख दिया है। ये स्पेशली आजकल तो ये व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सबसे मनहूस मेरे को लगता है स्नैपचैट। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तगड़े तगड़े फिल्टर आते हैं ना, समझ में नहीं आता लौंडा लौंडिया कब बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सब चीजें जो है ना मत करो भाई, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज यार एक समय सीमा बना लो हर चीज की। सबसे जरूरी चीज है अपने परिवार को स्पेशल क्वालिटी टाइम देना, क्यों कुमकुम सही कहा मैंने। हाँ तो बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों अब हम दोनों आपसे लेंगे जाने की इजाजत, और इतना ही कहना चाहेंगे जाते जाते, सोच बदलोगे तो इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन, अपना शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये वही शहर है जहाँ की मूंग की दाल बड़ी फेमस है, ये वही शहर है जहाँ का पीतल बहुत पॉपुलर है, और ये वही मुरादाबाद है जहाँ का अपना सामुदायिक रेडियो आज आपके साथ है। तो जुड़े रहिए दिल से दिल तक, और आज रात का खाना अगर परिवार के साथ खा रहे हो तो ध्यान रखिए मोबाइल को थोड़ा सा जो है स्पेस दे दीजिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर कुछ और नई जानकारियों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी चलें फिर कुमकुम।
1: जी हाँ चलते हैं।
0: बिल्कुल, तो कुमकुम भी अपना थैला उठाकर जाने को तैयार है और मैं भी अपना बैग लेकर बाहर निकलने को तैयार हूँ। तो सोच बदलो, क्योंकि अपने लोग ऑनलाइन नहीं आसपास होने चाहिए। याद रखिए कोई भी चीज अगर होती है नेगेटिव वाली तो ऑनलाइन की दुनिया के लोग नहीं आएंगे, सबसे पहले आपके करीबी लोग आएंगे। तो इसलिए अपने करीबी लोगों को स्पेशल समय दीजिए। अभी के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और बजाते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नए सफर पर।

0: जा।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

गुमा सुबह पे जिस तरह शाम का वो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जा

रखना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, यहाँ पर वक्त हुआ है अभी 3:13। देखिएगा, इतने खूबसूरत सा ये सफ़र हमारा और आपका शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश का, जहाँ पर हम ढेर सारी बातें आप सभी के साथ करने वाले हैं और आपकी मनपसंद के गीत आपको सुनवाएंगे। जिस गीत पर आप मुस्कुराना चाहते हो या झूमना चाहते हो, कोई ऐसा गाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिएगा। आप हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और सफ़र को बनाएंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि श्रोताओं, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस गर्मी वाले वेदर में ना मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घर से बाहर बेवजह ना जाइए, घर में ही रहिए और आराम कीजिए। एंड कोई अगर काम है अर्जेंटली, तो सर पर कपड़ा ढककर आप जाइएगा ताकि गर्मी से आप बच सकें। एंड पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखें, पानी पीते रहें। बाकी अपने दोपहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हेलो फरमाइश शो सुनते रहें। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से, बातचीत करते हैं और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, सबसे पहले आपको प्यार भरे नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके परिवार में, आपके स्टूडियो में क्या हाल है?
0: हाँ जी सर, हमारे स्टूडियो में सब बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं और मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त सर?
1: इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा हाँ, इस वक्त हम भी आपसे बातें कर रहे हैं। बताइएगा, इस दोपहर को आप कैसे और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं? कौन सा ऐसा गाना है जो आपने आज डिसाइड किया है कि मुझे ये सुनना है हेलो फरमाइश में?
1: तस्वीर फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा। गाने के बोल हैं, आइए बहार को हम बाज लें, कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी जी बिल्कुल बताइए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रईसुल अंसारी, शाहनूर अंसारी, मसूद हुसैन, रजा हुसैन, अंसार हुसैन, शारिक अली, इशाद अली, शमा परवीन, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: कौन सा गाना आपने बताया, एक बार फिर से बताइएगा सर?
1: मूवी का नाम है तकदीर।
0: तकदीर मूवी का गाना सुनना है आपको?
1: जी, और गाने के बोल है, आइए बहार को हम बांट लें।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये गाना जहन में कैसे आया कि आज मुझे यही ट्रैक सुनना है?
1: मैं पहले से सोच कर रख लेता हूँ कि गाना आज मुझे कौन सा सुनना है।
0: अरे वाह, क्या बात है। ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम लौट कर आते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, और इस खूबसूरत सफ़र को और भी ज़्यादा आप खूबसूरत बना सकते हैं आपके अपने पसंदीदा गानों के साथ। और मंडे की दोपहर है, बहुत प्यारा सा ट्रैक सर ने बोला है, लेकिन वो अभी हमें मिल नहीं पा रहा है, तो एक और बहुत प्यारा सा गाना है जो हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब इंजॉय करेंगे। तो ये खूबसूरत सा गाना सुनिएगा, मैं लौट कर आती हूँ बस इस प्यारे सी गाने के उस पार। यह है आपके शहर का अपना पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गाने गुनगुनाते रहिए और प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर हमेशा बरकरार रखिए।

0: आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
0: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश में। खुशी आपके साथ है। और देखिए श्रोताओं, यहाँ पर अभी आपने एक हरियाणवी गाना सुना। मैंने कहा हमारे श्रोता बहुत देर से थोड़ा सा लेजीपन हो रहा था उनका, लाइक जैसे सो के उठे तो एकदम से बॉडी में ना एनर्जी नहीं आती है, ऐसा लगता है कि बस अभी थोड़ा सा बैठ जाते हैं, एक ग्लास पानी पी लेते हैं वो मोमेंट। तो हमने कहा चलिए उनको जगा देते हैं और ऐसा हरियाणवी गाना अभी हमने सुनवाया कि मतलब नींद तो आपकी चली ही गई होगी, लेकिन हाँ आप थिरक भी रहे होंगे, क्योंकि हरियाणवी गाने भले ही समझना है लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा होता है उनका। हर इंसान थिरकने पर मजबूर हो जाता है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और जानेंगे कि उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो, हाय, हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं इरशाद अंसारी बोल रहा हूँ, कैसे हैं
0: जी? कहाँ से बात करें? अच्छा सॉरी सर, कैसे हैं आप? ओके,
1: शो शुरू नहीं किया है क्या आपने?
0: नहीं, शो तो ऑनियर है, चल रहे हैं हम लोग लाइव, तो बातचीत कर रहे हैं आपसे
1: जी?
0: आपसे लाइव में ही तो बातचीत कर रहे हैं हम लोग।
1: अच्छा, लाइव बात कर रहे हैं हमारी?
0: हाँ जी, लाइव बातचीत हो रही है आपकी और हमारी, बताइएगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: मैं इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ, मनपुरी कॉलोनी मुरादाबाद।
0: जी सर बिल्कुल, आपका नाम और आपकी आवाज़ से हम पहचान गए हैं कि आप इरशाद जी बात कर रहे हैं। बताइएगा, खैरियत से हैं सर?
1: जी बढ़िया है, आप बताइए और आपके परिवार में और साथ में सब लोग?
0: हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आपके वहाँ पर सब ठीक है घर में? जी बताइएगा सर, क्या
1: एक सॉन्ग सुनना था आशा भोसले जी की आवाज में?
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा कौन सा ट्रैक आपको सुनना है।
1: चेहरे तो खुशी छा जाती है,
0: चेहरे पर खुशी छा जाती है, ओके। और कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: मेरे साथ में ये हमारे सारी और मुरादाबाद से छपी है जी, और कासिम अली और सलीम अंसारी, बाकी जो
0: ओके सर ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक सुनते हैं, चेहरे पर खुशी छा जाती है। देखिए हमारे चेहरे पर तो खुशी आ ही जाती है जब आप सभी के इतने प्यारे प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी प्यारी प्यारी फरमाइशें करते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं। और ये खुशी का मौका खुशी भी आपको दे रही है कि अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जी हाँ, अब आप समझ ही गए हैं, तो फटाफट से कॉल लगाओ। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। और अभी आपने एक खूबसूरत सा गीत एंजॉय किया एंड बहुत ही प्यारा सा आशा भोसले जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज़ में। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है, वो हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो,
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैम अजय।
0: अजय,
1: हाँ मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो जी आप?
1: मैम मुरादाबाद से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं। अभी क्या करते हो आप, बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो?
1: मैंने 7th में।
0: अच्छा, 7th क्लास में। ओके, बताइएगा आज क्या सुनना है आपको। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बताओ, कौन सा ट्रैक सुनना है? आप बहुत गुमसुम से हो गए हो, एकदम शांत।
1: नहीं।
0: हाँ अभी ठीक है, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनोगे अजय? चलो हम सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके, तो चलिए, अजय बोल रहे थे कि मैम हमारे यहाँ पर फंक्शन है और शादियों का सीज़न भी है, तो एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत सा है, फ्रॉम द मूवी मेरी यार की शादी है, और ये टाइटल ट्रैक हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो एवरीवन, आप सब इंजॉय कीजिएगा। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के इस बार।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी है टाइटल ट्रैक। और इस खूबसूरत गीत को गाया था उदित नारायण जी, सोनू निगम और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज़। जीत प्रीतम जी का म्यूजिक था और जावेद अख्तर जी के लिरिक्स थे। एंड अभी बात करते हैं, हमारे साथ में एक बड़ी प्यारी सी स्वीट सी कॉलर जुड़ी हैं। एंड क्या उनकी फरमाइश है वो हम उन्हीं से जानते हैं एंड डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम इशिका है।
0: इशिका, कैसे हो इशिका? ओके, और बताओ इशिका, मम्मा पापा कैसे हैं आपके?
1: मम्मा पापा भी सही हैं।
0: ओके, अभी क्या कर रहे हो आप बताओ? आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और आपसे बात करके बहुत हैप्पी हूँ। आप बताओ इशिका, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो?
1: मैं फोर्थ में हूँ।
0: फोर्थ क्लास में हो, आप बहुत स्वीट हो। आपकी आवाज भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मीठी है, स्वीट है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। बताओ इशिका, आप कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: मैं गुलाबी शरारा।
0: ओए होए, गुलाबी शरारा, क्या बात है भाई, बहुत प्यारी चॉइस है आपकी। आप डांस करते हो? ओके, आप लेकर चलोगे हमें तो हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू इशिका, आपने कॉल किया और आपका हम पसंद का गाना प्ले करते हैं। आप डांस करो, ठीक है? ओके बाय, ख्याल रखो अच्छे से अपना, बाय। तो चलिए, ये तो बहुत स्वीट से हमारे लिसनर थी और बहुत क्यूट भी है ये बेबी गर्ल। एंड इनकी पसंद का ट्रैक है गुलाबी शरारा और ये गाना मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो चलो, बिना किसी देरी के सुनते हैं इस ट्रैक को, लौट कर आते हैं ये प्यारा सा गाना और कूद जाते हैं थोड़ा पहाड़ियों की वादियों में, क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा गढ़वाली है। एंड थोड़ा नहीं, प्रॉपर गढ़वाली है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस ट्रैक को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक एंजॉय किया एंड बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में इंदर आर्य जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में। और इस गाने को सुनकर ना, मतलब अगर जो डांस ना करना चाहे वो भी डांस कर लेता है, क्योंकि गाना ही इतना प्यारा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस ट्रैक को सुना था ना, तो मैंने बहुत डांस किया। और अभी भी जब भी ये गाना मैं सुनती हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे कि उनकी क्या फरमाइश है। देखिए, हेलो फरमाइश में कौन सा गाना कब प्ले हो जाए किसी को नहीं पता होता है। तो मैं कहती हूँ कि जिंदगी भी इस तरह से ही है, हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। कभी खुशी आती है लाइफ में तो कभी गम आते हैं। तो ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, आप बस मुस्कुराइए। जिंदगी में जो होगा बेस्ट होगा और समय कभी नहीं रुकता है। अगर खुशियाँ आई हैं तो वो भी नहीं रुकेंगी, और अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर लाइफ में गम है तो वो भी नहीं रुकेंगे। समय के साथ चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके पास अभी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हैं तो थैंक यू कहिए ऊपर वाले को एंड अपने पेरेंट्स को और हर एक वो चीज़ को जिससे आपको खुशी मिलती है। बाकी अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा। जी, आप इतने धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हैं सर? आज आपने खाना नहीं खाया है? अभी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो खाना खाया है, बिल्कुल एनर्जी के साथ बात करनी चाहिए ना।
1: हाँ जी, ये तो बात ठीक है।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम जी। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, हमने लाओ कॉल भी किया जाए, कॉल भी लग गई और आपसे बातें भी हो रही हैं।
0: जी जी बिल्कुल, बताइएगा अपने शहर का मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
1: शहर का मौसम कुछ मत पूछो मैम जी, बड़े बुरे हाल हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है।
0: गर्मी बहुत ज्यादा है, राइट। तो इस गर्मी में कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं जो आपके माइंड को एकदम कूल यू नो कर दे, थोड़ी सी राहत लेकर आए इस गर्मी में?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा जान तेरे नाम। इसमें एक सॉन्ग है, मैंने ये दिल तुझको दिया।
0: अच्छा, और ये ट्रैक किनके लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ जी, कुछ दोस्तों के नाम रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: जी,
1: तारुण नूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, गंगा दत्त सावंकर जी हैं, लाल मोहन अंसारी जी
0: हैं। ठीक है सर, आपकी सभी मित्रों के साथ, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत संगीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार आपको भी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत। कुमार सानू साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी मधुर सी आवाज में ये मधुर सा गीत मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप भी ट्राई कीजिए कि आपको भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837898986।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
9: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
10: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
12: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फरमाइश शो में, खुशी आपके साथ है। और देखिए खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं यहाँ पर ओनली ऑन या एफएम मुरादाबाद 89.6। अपने फेवरेट गाने आप सुन रहे हैं और ये 2 घंटे का गोल्डन चांस हम आपको देते हैं यहाँ पर, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए 1 घंटा तो कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटा आपके पास बचा है, तो जल्दी जल्दी से आप हमें कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837869698938396। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, जी आपको भी आदाब, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं मुरादाबाद से खाना आलम बोल रहा हूँ
0: जी, बताइएगा कैसे हैं सर आप।
1: मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि मदद देगी आपने, मैं गीत सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा, मदर्स डे स्पेशल सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप जी, बताइएगा कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं। ठीक है सर,
1: तुलना नहीं करी जा सकती किसी के लिए भी कि ये वाला अच्छा है, क्योंकि माँ को पर जो गीत है उसका कोई मोल नहीं है।
0: हाँ जी एग्जैक्टली, वो तो अनमोल है जी। तो सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, एंड कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जी, कुछ धन्यवाद आपका भी हमें कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत एंड लौट कर आते हैं, तब तक आप भी ट्राई करना ना भूलूं। नंबर मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है, 9837898968968। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है और यहाँ पर समय हुआ है 4:13 एंड अभी आपने बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक सुना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी रिजवान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गोरखपुर से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, गोरखपुर से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप तो दुआएं मैम।
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है लैला मजनू मोदी का गाना है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
0: जी बताइएगा गोरखपुर का मौसम कैसा है सर?
1: बहुत गर्मी है मैम, ये तो समझ लो कि अभी भी काम में बैठा हुए हैं, काम नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहे, बैठे हैं आराम कर रहे हैं।
0: क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ज्यादा गर्मी में काम भी नहीं हो पाता है ना। जी तो
1: बहुत गर्मी।
0: हाँ जी, इस गर्मी में सर अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये खूबसूरत सा गीत आप इनके साथ सुनना चाहते हैं ये बताइएगा।
1: जी हमारे साथ में दोस्त हैं, हमारे मिलने वाले हैं, सभी के साथ में सुनना चाहते हैं।
0: जी सभी के साथ सुनवाते हैं। हाँ ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं खूबसूरत से गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी लैला मजनू से, जो 1976 में आई थी। और इस प्यारे से गीत को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
0: अरे वाह।
1: और इतना ही नहीं, जहाँ आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
0: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर यूको हमा टायर्स के 4 टायर

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पहले, हाँ जी, पहले शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने बहुत ही खूबसूरत ट्रैक एंजॉय किया। और दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ना सबसे खूबसूरत तरीका है छोटी छोटी बातों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेना। और देखिए, अभी जो हमारे पास टाइम है, आपके पास टाइम है, तो आप इस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, आप मुझे कॉल करो एंड हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कोई गाना जो आपका फेवरेट है, जो आप सुनना चाहते हैं बहुत दिल से, आपके दिल की, बहुत दिनों से आपके दिल की ख्वाहिश है कि अगर मेरा कॉल लगेगा तो मैं ये ट्रैक सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ, तो बिना किसी देरी के आप फ़ोन लगाइएगा। हमें आप सभी की फ़ोन कॉल का बेसब्री से इंतज़ार है। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप सब?
1: जी कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा आप कैसे हैं और क्या नाम है आपका?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा नाम ताहिर है।
0: जी ताहिर जी, बताइएगा। और सब खैरियत से हैं आपके यहाँ पर?
1: आपकी दुआएं हैं, क्या हो सकता है।
0: हाँ बिल्कुल, दुआएं तो रहती हैं और हमेशा हम करते हैं सभी के लिए कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।
1: हमारे सभी आरजे खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये भी हम चाहते हैं।
0: जी जी बिल्कुल सर, बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: आज गाना सुनेंगे, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुना है आज आपने हेलो फरमाइश में। ठीक है सर, ये गाना, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये बात है, थैंक यू। तो सुनवाते हैं बिना किसी देरी के ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत सा है, मुझे बहुत पसंद है और आप सभी इस गाने को पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाओ, नंबर भूल गए हो, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। कितना इजी और सिंपल नंबर है ना, फटाफट से डायल करो और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाओ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
2: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
3: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
2: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और श्रोताओं, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक एंजॉय किया। फ्रॉम द मूवी रफू चक्कर से, और खूबसूरत सा ये ट्रैक। मैंने कहा था ना कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि गाने के लिरिक्स इतने ही खूबसूरत थे और इतनी ही खूबसूरत सी आवाज़ में इस गाने को गाया गया था। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट फरमाइशकर्ता जी के साथ, कौन कहां से जुड़े हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: हम जनकार बोल रहे हैं, भूजपुर आता से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैम, गाड़ी चलाते हैं।
0: अच्छा, ड्राइविंग करते हैं आप?
1: जी जी मैम।
0: जी तो इस वक्त कहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं आप, कहाँ पर हैं इस समय कहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं सर? हेलो, लगता है सर शायद बिजी हैं, इसलिए ये नेटवर्क इशू हो सकता है, आवाज़ नहीं आ रही है। पर कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। कहते हैं ना दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलिए गाना मैं सुनवाती हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत सा, एंड लौट कर आती हूँ फिर। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं है जाना, खुशी कहती है दिल से मुस्कुराना है और इस प्यारे सी गाने को इन्जॉय करते जाना है।

माई ऑल लवली लिसनर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। अब आप सोच रहे होंगे खुशी जी इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हैं। हम आपको बताते हैं, हमने अभी खाए हैं पकौड़े और उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च थी जो कि हम नहीं खा पाते हैं, इतना स्पाइसी इतना तीखा। हमारे कुछ ऑफिस की पर्सन है जो बहुत तीखा खाते हैं, तो उनसे अभी कनेक्ट करते हैं हम डायरेक्टली। हमारे साथ में अखिल जी हैं।

0: हेलो सर, नमस्ते। कैसी हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया। खुशी जी, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ, ठीक भी नहीं हूँ। आपने मुझे इतना स्पाइसी खिला दिया है, इतना ज़्यादा तीखा। मैं पानी पी पी के परेशान हो रही हूँ,
1: स्पाइसी का भी अलग मजा है।
0: लेकिन मैं कभी खाती नहीं हूँ। मेरे को ना लाइट पसंद है हमेशा।
1: चलिए चलिए चलिए, अभी हम अपने नए कॉलर से पता करते हैं
0: हाँ,
1: कि
0: उनको क्या पसंद है। ठीक है,
1: हेलो, फरमाइश।
0: देखिए, हमने उनसे मालूम करने के लिए सोचा कि चलिए मालूम करेंगे कि उनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या नॉर्मल पसंद है, लेकिन उनका कॉल ही डिसकनेक्ट हो गया
1: इसका मतलब उन्हें स्पाइसी
0: है।
1: पसंद
0: ओके, तो चलिए अभी हम एक गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। उसके बाद फिर से कनेक्ट करते हैं एवरीवन आपके साथ। तब तक आप भी हमें कॉल लगाओ, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए एवरीवन, तो बिना किसी देरी के हम सब लोग एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को।
1: हेलो, हाँ जी सर, बताइए सर, फोन कट गया आपका। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं सर आप? केंद्र भान, इंद्र भान। ठीक है इंद्र भान जी, आप लाइन पे रहिएगा।
0: सर ऑन ईयर ही है।
1: लाइन पे ले लेते हैं।
0: हाँ जी, आप ऑन ईयर ही हैं अखिल सर।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो इंद्र भान सिंह जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। कॉल किया आपने, थैंक यू। ये सरप्राइज था, कैसा लगा अखिल जी आपको?
1: खतरनाक भैया, बच के रहना पड़ेगा, खुशी
0: बच के रहना है ना।
1: हाँ,
0: चलिए अभी गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए एवरीवन। मोबाइल नंबर आपको याद हो गया ना अखिल सर?
1: हाँ जी, याद हो गया।
0: हाँ तो बताइए,
1: 9837896896।
0: वेरी गुड, ये तालियां अंकिल सर के लिए।
1: और आप ऐप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप में जाके, अपने प्ले स्टोर में जाके
0: आप एप्लीकेशन
1: मुरादाबाद 89.6 वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करें। रेड कलर का लोगो आएगा आपका।
0: हाँ जी, आपको उसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और आपको एफएम मुरादाबाद ऑन करना है। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें आपको फिर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी गाना सुनो, हम लौट कर आते हैं।
1: ओके जी।

0: गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आरजे खुशी एंड अखिल सर, जो कि मुस्कुरा रहे हैं अभी और कहते हैं खुशी जी आपने तो हमारे साथ प्रैंक किया, हमें पता भी नहीं, आपने हमें लाइव ऑन ईयर ही कर दिया। मैंने कहा हाँ जी खुशी, यही थोड़ा थोड़ा मैजिक करती है, जिस बात से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और अभी अखिल सर हमारे साथ कौन जुड़े हैं, जरा बात करते हैं उनसे।
1: हमारे साथ जुड़े हुए हैं नईम जी। नईम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। पहले हमारे श्रोताओं को बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी मैं सिरसों द्वारा मेहुल अकरम बोल रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और हमारा नेटवर्क वहाँ पूरा सही आ रहा है, आपके पास आवाज़ सही आ रही है एफएम की?
2: साहब आपके नेटवर्क का जवाब नहीं है सर।
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
2: और
1: सब आपके आसपास सब लोग सब सही, सब खुश, खुशी मंगल,
0: सब कुशल मंगल है। आपकी आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है अखिल सर।
1: आज बताइए आज आपका आपकी क्या फरमाइश है? आपके दोस्तों के नाम लीजिए, बताइए।
2: और डॉक्टर अरविंद है,
0: ठीक है।
1: सभी अखियों से गोली मारते हैं, सही है सही है सही है। आप और आपका दोस्ताना बरकरार है, सभी दोस्त आपके सब अच्छे हैं, बढ़िया से रहें।
2: और आपकी स्टूडियो वाला सब सही है, बढ़िया है?
1: सब बढ़िया, सब बढ़िया। नहीं साहब सब बढ़िया है।
0: खुशी जी यहीं पर हैं, आपको सुन रहे हैं हम, आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: नमस्कार जी। नमस्कार नहीं,
0: तो अखिल सर बिना किसी देरी के सुनते हैं शानदार सा ट्रैक और लौट कर आते हैं। एंड एक हमारे लास्ट कॉलर और हमारे साथ कनेक्ट होंगे, कौन है वो तो पता नहीं है लेकिन बहुत लकी होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। एवरीवन आप भी स्माइल करो प्यारी सी।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। देखिए यहाँ पर वक्त हुआ है 5:04 और हमारे लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनका कॉल डिसकनेक्ट हो गया। कैसे हुआ कॉल डिसकनेक्ट,
1: ये तो उस समय पता नहीं चल पाया, मगर राजीव जी करके हमसे जुड़े थे, राजीव भटनागर जी।
0: हाँ जी,
1: जो उस समय ट्रेवलिंग कर रहे थे और आपके दिल्ली रोड पे थे।
0: अच्छा,
1: और उन्होंने अपनी फरमाइश बताई थी कि खुशी जी मैं वो कौन सा गाना है,
0: जादू तेरी नजर,
1: मैं यही चेक कर रहा था खुशी को याद
0: है, तेरा बदन,
1: बहुत बढ़िया। हाँ, तो यही गानी की उन्होंने फरमाइश की थी
0: जी,
1: और उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। और बताइए खुशी जी, आप अगर मुरादाबाद कभी घूमते हो, मुरादाबाद में जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप कौन सी जगह है जो आप ज्यादा जाना पसंद करते हैं?
0: मैं आपको बताऊं, अगर मैं मुरादाबाद में ज्यादातर गई हूँ घूमने के लिए, स्पेशली दर्शन करने के लिए मैं बताऊं, तो मैं मनोकामना मंदिर ज्यादा गई हूँ। वहां पर जाके एक अलग ही सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील,
1: शांति सी मिलती है।
0: शांति मिलती है,
1: सही बात कही, सुकून मिलता है। बहुत बार नोटिस किया कि आप जब भी मैं कभी मनोकामना मंदिर गया हूँ तो वहाँ पे मुझे अलग ही शांति मिलती है। और उसके बाद मैं वहाँ पे आपका
0: महाकालेश्वर
1: मंदिर जो है 0 पॉइंट के पास,
0: हाँ जी,
1: वहाँ पे भी एक अलग ही आपको बहुत ही
0: अद्भुत नजारा, एक मतलब कहते हैं ना कि एक अलग ही अद्भुत शक्ति तो वहाँ पर है ही, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव वहाँ पर मिलता है, वहाँ सुकून मिलता है, एकदम पीसफुल जगह है वहाँ, और पीसफुल
1: रविवार के रविवार वहाँ पे आपका जो है पूजा बहुत अच्छी होती है हर संडे सुबह सुबह।
0: अच्छा, संडे में, ओके, तो आप जाते रहते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज ये हमारे कार्यक्रम में लेट जुड़े हैं, बट हम इनसे कल से कहेंगे कि प्लीज टाइम पे आइएगा।
1: हाँ बिल्कुल, टाइम पे आऊंगा मैं 100%। हाँ,
0: तो आज आपकी पनिशमेंट है, आज हम आपको पनिशमेंट देते हैं कि आप कल हमारे लिए चॉकलेट लेकर आइएगा।
1: पक्का पक्का,
0: ठीक है,
1: पक्का। और जो पहले लिसनर होंगे उनको भी चॉकलेट दीजिए।
0: हाँ, उनको भी, और हाँ टाइम पे जरूर आइएगा, क्योंकि आज सब थोड़ा सा बिजी था सर्कस शेड्यूल, एंड आज फाइनली ये लेकिन आए, देर से आए, दुरुस्त आए, ये हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अखिल सर, आपने ज्वाइन किया। तो बिना किसी देरी के अभी सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और अपने श्रोताओं से लेते हैं जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: हाँ जी, और स्माइल भी करते रहिए अखिल सर की तरह। बाय बाय एवरीवन, कीप स्माइलिंग।
1: बाय बाय।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने, जादू तेरी नज़र का जादू। और सच में जो पुराने गाने होते हैं ना, बड़े लाजवाब होते हैं। अब आर्जरीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आर्जरीना के साथ अब कनेक्ट है, और समय की बात करूँ तो 5:11 हो चुके हैं, हरियाणवी तरका शो में है जी। तो 2 घंटे आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं, और यही रहने वाले जी, कितने भी नहीं जाने वाले। आई नो, मुझे पता है कि बेसब्री से मुझे भी 5 बजे का इंतजार रहता है, और आप सबको भी 5 बजे का इंतजार बखूबी रहता है। सो आर्जरीना तो फाइनली आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है, बस अब देरी इस चीज की है कि आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना गाइस, मतलब क्या ही कह सकते, इतने प्यारे मैसेज, मतलब सुन देखकर और पढ़कर ना दिल खुश हो जाता है। तो आप अपना मैसेज पहुंचाते रहें, और आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहें हरियाणवी तरका शो में। और एक बहुत ही प्यारा गाना आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ, क्योंकि गाने बड़े प्यारे हैं जी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
3: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA, कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद। कॉल 9548088900।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। हरियाणवी तड़का शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं आप। और समय की बात करूं तो 5:18 हो चुके हैं। आई नो कि आप सभी अभी ऑन द वे हैं, यानी कि ऑफिस से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और तो मेरी जान, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, ट्रैफिक में हैं आप तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाना ना भूलें, क्योंकि ये समय अक्सर ट्रैफिक से भरा हुआ होता है, यानी कि इस टाइम आपको भरपूर मात्रा में ट्रैफिक मिल जाएंगे। तो इसीलिए धैर्य के साथ गाड़ी चलाइए। आपको कोई भी हीरोबाजी हीरोपंती नहीं दिखानी है कि भाई मैं हूँ और मैं ही चलाता हूँ सबसे तेज गाड़ी और मैं घर जल्दी पहुँच जाऊँगा, बल्कि शाम आपकी है। कोई भी इसमें कोई भी आपको नहीं डांटेगा, बल्कि ऑफिस सुबह का टाइम होता है जिसमें रहता है कि हाँ यार बॉस, अगर हम ऑफिस लेट जाएंगे तो थोड़ी सैलरी कट हो सकती है, बहुत सी बातें रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, क्योंकि घर भी आप जाएंगे तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि आप लेट आए हो, बल्कि आप जाओगे तो इनफैक्ट एक गिलास ठंडा ठंडा पानी आपसे पूछा जाएगा। और अच्छी बात है, जब भी हमारे फैमिली में से कोई भी बाहर से आता है या फिर रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, उनको गर्मी के टाइम है, गर्मी के टाइम पानी, देखिए चाहे किसी को प्यास लगी भी हो ना भी लगी हो, पानी पूछ लेना चाहिए। और हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, और आरजे रीना को सुनना भी ना भूले। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी बहुत ही प्यारा गाना आप सभी के लिए निकाला मैंने। सो आप गाड़ी में हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, धीरे धीरे, हौले हौले। और आरजे रीना

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। जरा तस्वीर से निकल कर तो देखो, सही बात है। लेकिन हम सच बताओ, जब सपनों में खो जाते हैं ना, तो तस्वीर क्या, हम बस सपनों में गुम हो जाते हैं। और आरजे रीना आपके साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:31 हो चुके हैं, और गर्मी के टाइम में देखिए, हम या तो हम इसे ऑयली चीज खाया नहीं जाता है, और ऊपर से जब खा लेते हैं तो वजन बढ़ने लग जाता है। लेकिन ऐसी एक फ्रूट्स है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिलेगा, और साथ ही साथ वेट लॉस में भी वो बहुत फायदेमंद है। आखिरकार क्या है बताएंगे जी, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको अनुभवी डॉक्टरों से इलाज मिलेगा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सर्जन। इसके साथ साथ सभी प्रकार के परीक्षण, सिटी स्कैन, आधुनिक कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, आयुष्मान, टीपीए और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो सही इलाज के लिए आज ही आएं डॉक्टर लाल सिंह मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गंगन तिराहा, संभल चंदोसी रोड, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान, तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
6: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है हरियाणवी तरका शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है मेरी जान। और समय की बात करूं तो 5:33 हो चुके हैं, और आज के अगर वेदर की बात करूं तो अभी यानी कि टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आज का जो वेदर है वो थोड़ा सा यानी कि रुख बदल सकता है। अब रुख कैसे बदल सकता है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये कहा जा रहा है हरियाणा, दिल्ली, यूपी के कई जिलों में ना बहुत ताबड़तोड़ बारिश, आंधी तूफान आने की संभावनाएं जताई जा रही है, और बादल से यानी कि आसमां घिरा हुआ है। और देखिए, आंधी तूफान जब भी आती है तो मैं हमेशा आप सभी से एक ही बात कहती हूँ कि जब ज़्यादा तेज आंधी तूफान आती है तो आप अपने घर में रहे या फिर किसी ऐसी जगह सेफ रहे, ताकि कुछ अगर उड़ के भी आता है तो आपको किसी प्रकार के नुकसान ना पहुंच पाए। तो आज का जो मौसम है वो जरा करवाहट ले सकता है, बस आपने सेफ रहना है और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं शो में, और अगला गाना भी बहुत प्यारा है। सो आज रात पार्टी करने वाले हैं तो ये गाना आपके लिए है गाइस।

0: क्या बात है जी, बहुत गाना एंजॉय किया आपने आज अर्जुनीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। अर्जुनीना के साथ कनेक्ट है आप। और देखिए, हम ना अभी गर्मियों के टाइम में क्या है कि हम बहुत ऑयली दे देते हैं, लेकिन हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी आपने जो ऑयली खाना है वो नहीं खाना है। जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए। और साथ ही साथ एक ऐसा फ्रूट जिसके खाने से वेट लॉस भी होता है और आपको विटामिन भी मिलता है, वो है अनानास। के फायदे बहुत सारे हैं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन बेहतर करता है, त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है, साथ ही साथ सूजन कम करता है, वजन घटाने में भी बहुत मददगार है क्योंकि ये होता है खट्टा साथ ही हड्डियों को भी ये मजबूत बनाता है। तो किसी को ऐसा है जो अनानास जिनको पसंद ना हो, अगर नहीं पसंद है तो आज से खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो सच बताओ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अनानास तो बहुत ज़्यादा खाती भी हूँ, क्योंकि इसमें जो फ़ायदे होते हैं ना वो अलग ही है। और ये खट्टा मीठा जो लगता है भाई साहब, क्या ही कह सकते, एकदम मज़ा आ जाता है इसको खाने के बाद। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे, बस आप अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रहिए। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि आप किसके साथ कनेक्ट है, अरे यार अर्जुनीना के साथ कनेक्ट है। अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे मेरी जान। फिलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना है, एंजॉय किया आपने। कुड़िया चुराना मेरा जिया गरिया, ओए होए जी। आरजू रीना के साथ कनेक्ट है आप FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे मेरी जान। आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो आरजू रीना के साथ, हरियाणवी दरगाह शो में है और देखे समय यानी कि पूरी रफ्तार पर होती है मेरी जान। और साथ ही साथ आज मैच यानी कि जो IPL मैच है शाम 7:30 बजे यानी कि धमाकेदार मैच होने वाला है, लेकिन हम ये अभी नहीं बताएंगे कि किस टीम का आज मुकाबला आमने सामने होने वाले हैं। अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बता सकते हो, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए और होले होले से बताइए ना, हमारा बहुत प्यारा मैसेज है बहुत प्यारा नंबर है गाइज, और आप सभी के मैसेज इतने प्यारे होते हैं, इतने लाजवाब होते हैं ना कि क्या ही कह सकते हैं। चलिए फिलहाल मैसेज आ गए, उनको भी गुनगुना ही लेती हूँ मैं। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ये हमारे पास सिसवा दौरा से कनेक्ट होते हैं नईमुल अकरम जी, और इनका कहना है कि मेरे साथ है दानिश भाई। ओके, आपके साथ दानिश भाई जी भी हैं। सो चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज आता है हमारे पास, हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? बिंदास शो कर रही हैं आप, और ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं जो बड़ी एक्टिव लेडी हैं, ललिता कश्यप जी, और इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए। देखिए आप हमेशा व्हाट्सएप पे मत पूछिए मुझे चाय के लिए, आप एक काम करिए स्टूडियो पहुंचा दीजिए, मुझे मज़ा आ जाएगा। और इनका कहना है कि अब लग रहा है शाम हो रही है हरियाणवी तरका के साथ, बिल्कुल जी सही कहा आपने, मज़ा आ रहा है ना, वेरी नाइस भी बोलती है। और इनका कहना है कि आज जो मुकाबला है यानी कि जिस टीम के बीच मैच होने वाला है वो मैसेज आ चुका है लेकिन अभी रिवील नहीं करेंगे। गाइस अभी के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा गाना आप सभी के बीच, सो आपने बताना है। देखिए मैं तो बताऊँगी आपको, यानी कि गाने ब्रेक के बाद, म्यूजिकल ब्रेक के बाद एंड एड के बाद फिर से आप सभी के साथ दूसरे घंटे में कनेक्ट होंगी ना, तब बताऊंगी कि आज जो मुकाबला है किस टीम के बीच होने वाला है। साथ ही साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आज शाम मुकाबला शाम यानी कि 7:30 बजे किस टीम के बीच होने वाली है IPL मैच, तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए और ये गाना सुनते जाइए। लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: के सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: क्या आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है? क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं? तो अब चिंता छोड़िए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार की संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और साथ ही साथ आज मैच में भी ऐसा ही मिर्ची लगने वाला है मेरे जान। समय की बात करूं तो 6:05 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है जी। अपने शहर का पहला रेडियो यानी कि कम्युनिटी रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6। और आगे बढ़े तो मैंने आप सभी से ये पूछा कि आज का जो मैच का मुकाबला है बहुत ही लाजवाब धमाकेदार एंट्री वाला है।
1: सब जिधर वो है उधर देख रहे हैं,
0: बिल्कुल सब इधर उधर देखते रह जाएंगे, और कब कौन सी टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा आप भी नहीं सोच पाएंगे। सो आज के अगर मैच की बात करूं तो पंजाब वर्सेस यानी कि दिल्ली के बीच आज मैच होने वाला है। बहुत ही धमाकेदार मुकाबले होने वाले हैं। सो आज का जो मैच है उसको स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर गए तो आप कि अगर इन दोनों टीम में से फेवरेट कोई टीम है तो अगर वो विजेता होता है तो आप कहेंगे सिट मैन यार, आज मैं मैच क्यों नहीं देख पाया, आज मुझे देखना चाहिए। इसीलिए शाम के 7:30 रेडी रहिएगा गाइस, और मैच देखिए, एंजॉय करिए फैमिली वालों के साथ, क्योंकि एक मैच है ना जो फैमिली वालों को एक साथ बैठा कर दिखाता है हर घर में ना पता चल जाए कि एक अगर इंसान मैच देखने वाला हो और बाकी सीरियल देखने वाला हो, लेकिन तो उस दिन क्या होता है सीरियल स्किप कर दिया जाता है लेकिन मैच देखा जाता है। और फिर क्या होता है कि जो सीरियल देखने वाले होते हैं ना वो कहते हैं यार बस थोड़ा सा दिखा दो थोड़ा सा दिखा दो, लेकिन नहीं भैया देखना तो मैच देखो, अदरवाइज मत देखो, आज तुम्हारे लिए टीवी बंद है। सो आज मैच देखिए, एंजॉय करिए, और आर्जेरीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल अगला गाना भी बहुत प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: और मैं कहती हूँ जी आपको, बस काम करते रहिए और एफएम मुरादाबाद रेडियो सुनते रहिए, 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है हरियाणवी तड़का शो में, और अब वक्त हो चुका है क्या कड़क सवाल, यानी कि आज का कड़क सवाल क्या रहने वाला है गाइस, वो तो अभी अभी आपको पता ही चल जाएगा। मेरे जान दोस्त थोड़ा यानी कि सब्र करिए, क्योंकि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं कि आज का कड़क सवाल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन उससे पहले कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया गाइस, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ललिता कश्यप जी ने हमें मैसेज पहुंचा दिया था कि आज पंजाब वर्सेस दिल्ली के बीच मुकाबला होने वाला है, आमने सामने आज होने वाली ये टीम। ओके चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
1: बजाज आई हॉस्पिटल मुरादाबाद में पिछले 40 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। आंखों से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, मोतियाबिंद, भेंगापन, नाखूना एवं नासूर तथा आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा डॉक्टर अशोक बजाज और डॉक्टर आकर्ष बजाज द्वारा सेवाएं दी जा रही है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की TPA कैशलेस एवं आयुष्मान द्वारा फ्री ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही विजिट करें तारीखाना चौक मुरादाबाद, कॉल 9548088900।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
3: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
4: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
3: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: अरे हथियार ताऊ हो करना चढ़,
6: रे ताऊ मन्ने भी नाचन दे। हां जी, ऐसी मजेदार हरियाणवी गानों के लिए और मजेदार बातों के लिए ट्यून इन करिए आरजे रीना को, जहां होती है हरियाणवी बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ एक पहेली जो आपके दिमाग को घुमाकर आपकी शाम को बनाएगी और भी झकास। सुनिए हरियाणवी तड़का आरजे रीना के साथ मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 5 से 7 ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए हरियाणवी तड़का, ये लड़की झकास है।
7: पूछो जरा पूछो
8: कड़ा क्वेश्चन।
0: बिल्कुल जी, कड़क क्वेश्चन लेकर आ गई आर्जरीना आप सभी के बीच। और कड़क क्वेश्चन ये है कि बहुत ही सिंपल है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गूगल पर जाकर आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। सो आज आपने क्या करना है जी, बस बिना सोचे समझे आज आपको मैसेज करना है। और आप कहीं भी है ट्रैफिक में तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ताकि उस रूट से जो भी आने वाले हैं वो बच सके। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करके बताएं, नंबर है 9837896896, क्योंकि इस वक्त आपको जाम भर भर के मिलने वाला है गाइस। और बहुत से रास्तों पर ना तो बस हाँ हल्का फुल्का ठीक है यार निकल जाएंगे, लेकिन बहुत से रास्तों पर आपको थोड़ा सा स्टम्प संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जाम बहुत होता है। और साथ ही साथ आज का दिन भी बड़ा लाजवाब है, यानी कि सोमवार का दिन और तारीख 11 मई। सो आज मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा आपको क्राउड मिल सकता है, बहुत ज़्यादा। सो आज का कड़क सवाल ये है, क्या आप एक दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है, गूगल भी नहीं करना पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस आपको मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करिए और हमें बताइए मेरे जान, क्योंकि समय की बात करूँ तो 6:18 हो चुके हैं। और वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ मैं कड़क सवाल, क्या आप एक दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या रह सकते हैं या नहीं रह सकते, सोचिए। फिलहाल के लिए गाना भी बहुत प्यारा है, लाल लाल लाल घगरा।
8: मुंडे कुड़ियों पंगड़ा

क्या बात है जी, बहुत ही एंजॉय किया आपने। व्हाट इज अ मोबाइल नंबर, आरजे रीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजवाते रहे गुनगुनाते रहे मेरी जान। समय की बात करूं तो 6:18 हो चुके हैं और ये गाना मैंने इसलिए प्ले किया है, व्हाट इज अ मोबाइल नंबर, यानी कि देखिए जब भी हम शादी में जाते हैं या फिर कहीं नई ताजगी जगह पर जाते हैं,

0: वहां पर आमने सामने कुछ ऐसे बंदे टकरा जाते हैं ना, जिसको हम इशारों में नंबर दे आते हैं और कहते हैं यार प्लीज शाम को कॉल मैसेज कर लेना, पक्का कर लोगे ना, जब नंबर हम देते हैं इनके डेट के लिए। समझ गए ना जी, बहुत समझदार है आप, मुझे पता है कि आप बहुत समझदार है। और अक्सर यही होता है कि या तो हम उसको नोट डाउन करके दे देते हैं नंबर कि ये मेरा नंबर है, मैसेज जरूर करने ना, जब बात होने लग जाती है गाइस तो शुरू शुरू में तो ऐसे दिखाएंगे भैया कि सारा टाइम सब कुछ तुम मेरे जिंदगी में सबसे पहले हो, लेकिन जब वही एक दो महीने बीत जाते हैं तो चल बे इस तरीके की मैसेज सुनने को आ जाता है, यानी कि थोड़ा कम समय मिलने लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इंसान जिंदगी में ना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिंदगी बार बार मिलती नहीं है, और जब ये मिलती है तो इसको एंजॉय करिए, अच्छे से जिंदगी को जिए, प्रेशर में आपको बिल्कुल भी नहीं जीना है, बस मस्त रहिए, मिजाज रही, और दूसरों के साथ कभी गलत ना करें, ना गलत कभी किसी के बारे में सोचे, क्योंकि हमें हम ना ये मेरे अंदर नहीं बल्कि हर सब किसी के अंदर होता है, हम बिना अगर किसी ने बोल दिया ना कि इसके बारे में ये बात है तो हम यकीन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यकीन नहीं करना चाहिए, जब तक आपको पूरी बात पता ना हो यकीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कल मदर्स डे था सो उसके बारे में भी बातें करेंगे, फिलहाल आज है मदर्स केयर डे, यानी कि जो हमारी प्यारी मुमनिया है ना वो अपनी केयर नहीं करती अच्छे से, पता नहीं क्यों नहीं करती, बस उनको परिवार परिवार परिवार लगी रहते, बस परिवार है तो हम ठीक है, अरे परिवार को चलाने वाली तो आप ही है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल आज का कड़क सवाल भी मैंने आप सभी से पूछा है कि अगर आपको एक दिन बिना फोन के रहना पड़े तो क्या आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, सोचिए। और ये चुनरी चुनरी चुनरी चुनरी करेंगे जी लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया गाइस, क्योंकि कमर्शियल एड ब्रेक के बिना तो आपको भी पता है कि मजा ही नहीं आता है। सो चलिए पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक सुनते हैं और उसके बाद आप सभी के जो मैसेज है उनको तो हम शामिल करेंगे करेंगे, साथ ही साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। सो अभी आपने बताना है कि क्या एक दिन आप बिना फोन के रह सकते हो, क्योंकि सांसें लेना तो भूल सकते लेकिन फोन के बिना वो तो सिर्फ और सिर्फ गाइस आप ही बता सकते हो। उसके लिए अपने हमें मैसेज करते रहना है, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अगर ट्वेल्थ के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
4: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद, कॉल 9412211111।
8: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। We'll be right back.

0: क्या क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने चुनरी चुनरी। आय हाय, सच बताओ लेकिन आज पहले के टाइम में क्या होता था कि मम्मी के जो पल्लू है ना उसे पकड़कर भाई हम अगर कहीं रास्ते में जा भी रहे हैं ना तो मम्मी के पल्लू पकड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या करें, मम्मी ही जींस टॉप पहनती है तो भैया कहाँ से पकड़े, बस आज उंगली पकड़नी पड़ जाती है कि मम्मा पकड़ लो हमें, कहीं हम मेले में गुम ना हो जाए। आप हरजा रीना के साथ कनेक्ट है जी, एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। क्योंकि देखिए जब आरजे रीने के साथ होते हैं ना तो गुनगुनाना तो बहुत जरूरी है मेरे जान, क्योंकि गुनगुनाना सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गुनगुनाते रहिए अपने जिंदगी में और यूं ही मस्त रहिए। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओए होए, अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी, जिंदगी में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और इतना टेक्नोलॉजी है कि भाई क्या ही कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हर चीज अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शो में अपने कि किन का क्या मैसेज आते हैं हमारे पास उन और मैसेज शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम आज बताने वाले टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में क्या कर रहा है आखिरकार। अब टेक्नोलॉजी ने हमारी जो हमारी जिंदगी है इतनी आसान कर दी है कि क्या ही बताए, मतलब इतनी आसान आप सोच भी नहीं सकते। पहले मम्मी आवाज लगाती थी बाजार जाकर सब्जी ले आओ, अब मोबाइल उठाओ ऐप खोलो और मोबाइल और क्या होता है सब्जी घर भेज दो। बस यही कहना होता है कि जब फोन उठाते हैं ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि सब्जी घर भेज दो और घर भी आ जाता है बहुत जल्दी, टाइम ही नहीं लगता है। इतनी मम्मी सुनाती है इतना तो सब्जी घर पर अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ जो पहले के टाइम में क्या होता था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो दोस्तों के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाना पड़ता था, अरे भाई आजा बाहर घूमने चल रहे हैं या फिर स्कूल चलते हैं और या फिर पार्टी शार्टी करने चलते हैं। पहले घर पर जाके आवाज लगाना पड़ता था, उससे क्या होता था कि घर वालों को पता चल जाता था अच्छा बेटा कहाँ जा रहे घूमने के लिए, तो उस टाइम थोड़ा सा बच के रहना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, बस एक वीडियो कॉल और कॉल मैसेज करा और दोस्त बाहर, पता भी नहीं चलता किसी को कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो। ऊपर से मम्मी पूछती है तो बहाना मार देते हैं, यार बस मम्मी यहीं तक जा रहे हैं बस घूम के आ जाएंगे आप टेंशन मत लो, और वो कब आधा घंटा एक घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के चक्कर में एक मजेदार बात ये भी रही है कि घर में चार लोग बैठे होते हैं पर सब अपने अपने फोन में बिजी रहते हैं, मतलब परिवार साथ में लेकिन बातचीत व्हाट्सएप पर होता है, पता भी नहीं चलता कि क्या बातें चल रही है। लेकिन देखिए अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है कि इंस्टा नहीं चलाता हो, कि आपकी जो प्राइवेसी है वो अब मेटा ने फिनिश कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा बहुत शातिर बनते हो तुम, अब हम देखते हैं तुम्हें। तो देखिए आज इंटरनेशनल यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर टेक्नोलॉजी को धन्यवाद तो कहना बनता है, कहना ज़रूर बनता है, क्योंकि ये हमारे इसने ज़िंदगी को बहुत चेंज कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको कहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम अपने परिवार को पीछा छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ फ़ोन में बिजी रहते हैं। चाहे घर पर 5 सदस्य हैं लेकिन 5 के पास फ़ोन होते हैं और 5ों आपस में फ़ोन में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय देना परिवार को बहुत ज़रूरी है कि कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है, इसीलिए अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे बातें करिए और जो पहले वाली वाइब थी उसको लेकर आइए गाइस। वो छत पर सोना, सभी के साथ एक साथ बैठकर बातें करना, और जब बैठ जाते थे सभी के घर वालों के साथ तो एक चीज़ बड़ी गड़बड़ी होती थी, कोई ना कोई भाई इतना इंटेलिजेंट निकल जाता था कि बीच में से बोलता पूछता था से अच्छा बताओ देश का प्रधानमंत्री कौन है, अच्छा चलो ये बता दो तुम्हें 2 का टेबल आता है, ये बड़ा होता था। अभी भी है भाई, अगर दादू वगैरह के पास बैठ जाओ ना तो यही करते हैं और फिर मन में बस एक ही ख्याल आता है धत तेरी की, यहाँ नहीं बैठते तो ये अलग बात तो बच जाते शायद, है ना, हमारे दिमाग में फिर बहुत सी चीजें बातें आने लग जाती है। लेकिन जो पहले का समय था वो अब नहीं रहा, बस हर कोई यही कहता है पूछो जरा पूछो
1: क्या हुआ है
0: कैसी बेकरारी है, जैसे क्वेश्चन पूछा दिल धक धक करने लगा। यही होने लग जाता था। सो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हैं और वो भी शामिल करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ गाने, उसके बाद कनेक्ट होंगे, फिर करेंगे। धक धक करने लगा, अरे क्या करने लगा, जियरा करने लगा गाइस। जब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो चलिए, फिलहाल आप बताइए कि आप बिना फोन के रह सकते हैं एक दिन या नहीं रह सकते, क्योंकि अगली बारी आपकी है, मैसेज की बारी है गाइस।

क्या बात है जी, जहाँ दिल लगाने की सजा मिले मैं कहती हूँ दिल वहीं लगाइए, क्योंकि भरपूर मात्रा में प्यार आपको वहीं मिलता है। जहाँ पर नोक झोंक समझिए प्यार, वहाँ पर बे इंतहा प्यार है। वो भले आपको जताते नहीं हो लेकिन प्यार शिद्दत से करते हैं। और आप आर्जेंटीना के साथ कनेक्ट हैं तो आप अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो को भी बड़े शिद्दत से प्यार करते हैं, इसीलिए तो आप कनेक्ट होते हैं, जितना प्यार देते हैं। और आप सभी कितने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

तो अर्जेंटीना के साथ अब कनेक्ट है हरियाणवी तड़का शो भी, और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके हैं गाइस। फिलहाल मैंने भी, वरना मेरे को कभी ये नहीं पता था कि हिंदी में 85 को क्या बोलते थे, पता चल गया 85 बोलते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सभी से ये पूछा है कि अगर एक दिन आपको बिना फोन के रहना पड़े तो क्या आप रह लेंगे या नहीं रह पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आता है। ये हमारे साथ ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनके कहने की हाँ मैं रह सकती हूँ फैमिली के साथ। ओके सो आगे बढ़ते हैं, अगले मैसेज की बात करते हैं। तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। हेलो गुड इवनिंग, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। आपका दोस्त विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और प्रोग्राम जब चलता है आपका तो बड़ा मजा आता है, गाने और बातें बड़े मजेदार होते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी। रीना जी, एक दिन बिना फोन के एक दिन बड़ा सुकून मिलता है। आय हाय क्या बात है जी। और इनका कहना है कि एक दो दिन बिना फोन के रहना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि पहले के जमाने में भी फोन नहीं होते थे, फिर भी चिट्ठियां भेजते थे और उसी से वार्तालाप कर लेते थे, एक दूसरे की हालचाल पूछ लेते थे, और उस टाइम की जो जिंदगी होती है ना, बड़ा सुकून भरा होता है। क्योंकि अगर अब की बात करूं तो क्या है, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, खराक फोन कर दिया कि अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। ऊपर से जो नई नवेली दुल्हन होती है, अगर भाई ससुराल में किसी ने कुछ बोल दिया तो मम्मी मेरे को खाना बनाना नहीं आता, यहाँ पे मेरे को सब बोल रहे कि खाना बनाओ, मैं कैसे बनाऊँ किचन में, मेरे को जाना ही पसंद नहीं है। इस तरीके कहने लग जाते। तो फोन हमारे जिंदगी में ना, सच बताऊ तो सबसे बड़ा कलेश यही करवाता है, फोन ही है जो सबसे ज्यादा कलेश टाइम टू टाइम करवाता रहता है। ऊपर से मैसेज आ गए, जो गुस्सा आ गया तो भाई मैसेज का भवंडर फैला देते हैं। और आज के टाइम में बिना फोन के दिन चलता भी नहीं है ना, ये कहना होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है, और ये हमारे पास वीडियो भी भेज रही हैं, रेडियो सुनते सुनते, और इनके घर में भी रेडियो बहुत ही बड़ा है भाई साहब। चलिए जी, फिलहाल इनका जो मैसेज आता है वो हम शामिल करते हैं, क्योंकि इनका जो मैसेज का है, जो इन्होंने मैसेज भेजा है, बड़ा शानदार मैसेज भेजा है। इनका कहना है कि मैं प्रीति सक्सेना हमारे साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मोबाइल के बिना पूरा दिन खुशी खुशी बिना बिता सकती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, 4 साल का है, 1 साल का है, और आपका रेडियो सुनकर इतने खुश रहते हैं कि उन्हें टीवी या मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बात है जी, रेडियो बजता रहता है, बच्चे डांस करते रहते हैं और हमारा दिन बेहतरीन बीतता है, और मोबाइल से दूर रहते हैं, और आप सभी इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अरे अरे क्या बात है जी, प्रीति सक्सेना जी आपने तो दिल ही जीत लिया आपने, और सही कहा आपने कि आप अपने बच्चों को अभी फ़ोन से दूर रखती हैं, और बच्चों को ना फ़ोन से जो स्क्रीन है इसे आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जितना हो सके आप अपने बच्चों को दूर रखेंगे उतनी ही बेहतरीन होगी, और उनकी जिंदगी में वो आगे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक बार फोन का लत लग गया तो भैया फिर तो इस फोन से पीछा छुटाना मुश्किल है, मुश्किल। मतलब समझ लीजिए कि फोन अगर खराब हो जाए ना तो जिंदगी, आधा बीमार तो वही जो इंसान है वो आधा बीमार वही हो जाता है। कहता है यार फोन के बिना जिंदगी बड़ी अधूरी लग रही है, इसीलिए फोन के बिना एक दिन बिता कर देखिए, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और जो कोई मेरे जैसा होगा वो तो बोलेगा भैया चाहे मैं बीमार हो जाऊँ लेकिन फोन बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आप सभी के साथ जो कनेक्ट होना पड़ता है ना, सच बताऊँ बड़ा मजा आता है, दिल से सुकून, मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है कि अब मैं रेडियो पर 5 बजे आप सभी के साथ लाइव आने वाली हूँ, और इसका इंतजार करती हूँ बड़ी शिद्दत से।
और वैसे भी 3-4 दिन से तो अपनी काम इतनी लगातार चल रही है गाइस कि क्या ही कह सकते हैं। चलिए फिलहाल अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। आप सभी ने बहुत प्यारा मैसेज किया है, लेकिन इस गाने के बाद फिर से कनेक्ट होंगे। बहुत प्यारा गाना है ये, जो मैंने आप सभी को बताया भी है। धक धक करने लगा, अगर एक दिन आपके फोन ले लिया जाए, घर वाले ले ले, तो भाई जो जो दिल है ना वो 440 वोल्ट का झटका लग जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: ब्रेन ट्यूमर, स्लिप डिस्क या लकवा जैसी जटिल समस्याओं का अब पक्का इलाज डीएमआर हॉस्पिटल में मुमकिन है, जहां पर भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। संपर्क करें डीएमआर हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9760304534। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: कोमल है तो कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हेलो हाय, मेरा नाम आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM। और आज की जो स्टूडियो की वाइब है ना, बहुत अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी स्टेशन में एक ऐसी महिला मौजूद है, एक ऐसी नारी शक्ति मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में है, जिनके बारे में मैं जितनी बातें बोलूंगा ना, शायद मेरा समय कम पड़ जाएगा। वो कहते हैं ना, जहां चाहा है वहीं रहा है। जब एक महिला कुछ करने की ठान ले तो वो सब कुछ कर लेती है, और वैसे ही आज सेशन में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, इस इंटरव्यू में हमारे रेडियो का हिस्सा बनी है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, जो हमारे शहर के अंदर ऑटो चलाती हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़ी पुरुषों को ऑटो चलाते हुए देखा है ना, जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम ऑटो में अक्सर मेल्स को देखते हैं, लेकिन मैंने पहली फीमेल मुरादाबाद के अंदर देखी है, और आज वही फीमेल को हम स्टूडियो लेकर आए, उसी नारी शक्ति को। हेलो मैम, कैसे हैं? नमस्ते, क्या नाम है आपका?
4: मैडम रामवती शर्मा।
3: रामवती शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जोरदार तालियां। रामवती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसी है पहले बताइए मैम?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
3: अच्छा, तो ये बताइए आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लगा।
3: अच्छा, आपने सोचा था कभी अच्छा कि आप ऐसी जगह आएंगी?
4: नहीं नहीं, वैसे आपसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
3: अरे थैंक यू सो मच आंटी। तो आंटी बोलूँ या मैम बोलता हूँ मैं?
4: आप
3: तो
4: आपको जो चाहो वो बोल सकते।
3: अच्छा, क्या नाम बताया आपने?
4: रामवती
3: शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। रामवती जी, थोड़ा अपने हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए।
4: अरे मैं बहुत परेशान थी पहले, बहुत अपने मतलब शादी जब हुई थी तो मैं बहुत दुखी थी, मेरे बच्चे मतलब ये था भूखे मरने लगे थे।
3: ओहो, अच्छा, तो मतलब आपकी शादी यही हुई है मुरादाबाद?
4: नहीं नहीं, मेरी शादी बिलारी में हुई थी।
3: अच्छा, बिलारी। तो मुरादाबाद कैसे आना हुआ?
4: मुरादाबाद जब मेरे बच्चे मतलब हमारे, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चला, वो अच्छा। है साइकिल टायर पंचर थे।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: तो उनका काम नहीं चला तो देखो बच्चे हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हाँ। तो मैं अपने एक जनी मुझे लेके आई थी यहाँ पर।
3: हाँ।
4: काम पे लगवाने के लिए।
3: हाँ।
4: तो मैंने उनके साथ मतलब पहले फैक्ट्री में जॉब करी।
3: अच्छा,
4: पैकिंग हॉल में।
3: अच्छा,
4: उसके बाद करते करते मैं चेकर बनी।
3: अच्छा, अरे वाह। फिर
4: चेकर बनने के बाद फिर मैंने लड़के की शादी करी तो मेरी बहू खत्म होगी किसी मतलब दिक्कत में आके।
3: ओके ओके।
4: उसके बाद मेरा एक छोटा सा होता है, आपने देखा भी होगा।
3: हाँ हाँ, मैंने देखा है आपके साथ।
4: तो मैंने उसकी वजह से ये रिक्शा लिया है।
3: अच्छा, तो उसकी वजह से रिक्शा चला रहे हैं?
4: उसे पाल रही हूँ।
3: हाँ।
4: और अपना पेट भी पाल रही हूँ।
3: अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके?
4: मेरे एक लड़की एक लड़का है।
3: एक लड़की और लड़की। हाँ। की शादी हो गई?
4: शादी दोनों बच्चों की हो गई।
3: अच्छा, दोनों बच्चों की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑटो चलाने का ख्याल कैसे आपके आया दिमाग?
4: ऐसे आया जब फैक्ट्री में काम करने लगी तो मैंने सोचा फिर कहीं ऐसा ना हो कि पहले इतना मैं फिर मुसीबत उठाने लगूं। तो मैं मेरे दिमाग में आया कि मैं ऑटो चला के देखती हूँ। तो मैंने एक पहले पुराना ऑटो लिया था।
3: अच्छा,
4: उससे मैं सीखी।
3: अरे वाह।
4: उससे सीखने के बाद
3: पहले ट्रेनिंग ली आपने? अच्छा,
4: ठीक है, अपना भी थी।
3: अच्छा,
4: किसी ने सिखाया नहीं था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: उसके बाद मैंने

0: फिर अपने हस्बैंड से कहा मैंने, मेरा मन है ऑटो चलाने के लिए।
1: हाँ, तो क्या कहा सर ने, तो मतलब परमिशन दी पति देव ने?
0: तो उन्होंने क्या बोले, ठीक है ले लो। फिर मैंने ऑटो ले लिया।
1: तो मतलब पति की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी?
0: नहीं।
1: परिवार की तरफ से कोई रोक
0: टोक?
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले ट्रायल लिया, पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद जब आपको लगा मैं मजबूती के साथ चल सकती हूँ, चला सकती हूँ, तब आप सड़क पे उतरे। तो कितने समय से आप ऑटो चला रही?
0: मुझे अब एक साल लगातार हो गया।
1: एक साल हो गया?
0: मार्च में हो गया।
1: अच्छा अच्छा, एक साल से आप ऑटो चला रही है मार्च में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइएगा मैम, जब आप ऑटो पहली बार सड़क पे लेके निकली थी तो आपको कैसा लगा? मतलब थोड़ा अजीब लगा?
0: अजीब सा लगा। हाँ, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं कि मैं चलाती रहूं।
1: अच्छा अच्छा, अभी ये लगता है कि चलाती रहूं।
0: हाँ।
1: ओके, तो मतलब जब आपके ऑटो में लोग बैठते हैं, लेडीज बैठती हैं, जेंट्स बैठते हैं, तो कुछ कभी कोई सवाल जवाब करते हैं कि आप कैसे क्यों चलाती हैं?
0: पूछते हैं।
1: हाँ।
0: पूछने वाले तो क्या बताए, किसी को क्या बताया,
1: क्या बताया जाए,
0: तो उन्हें बताई जाती है, कहते हैं हमारी मर्जी, हम चला रहे हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये मुरादाबाद की नहीं है रहने वाली, लेकिन अभी नहीं हम कह सकते हैं मुरादाबादी ही है ये। कितने समय से मुरादाबाद में आप रह रही
0: हैं? हमें 25 साल हो गए।
1: 25 साल से जो रह रही है तो वो मुरादाबादी ही होगी गाइस। तो मतलब आपका जो मतलब घर था वो चंदौसी, आपने बताया?
0: नहीं, बिलारी,
1: बिलारी, बिलारी से आप थी। तो मुरादाबाद आके फिर आपने शुरू किया अपना कारोबार और ये काम का सिलसिला?
0: पहले हम किराए पे रहे, फिर हमारा अपना हो गया।
1: अरे वाह, क्या बात है,
0: अभी हमारा अपना ही है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आंटी मुझे ये बताइएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई?
0: हाई स्कूल पास।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास थी आप, उसके बाद आपने कंपनियों में काम किया नॉर्मली, जो आप बता रही पैकिंग वगैरह में। फिर आपने क्यों सोचा कि मुझे ऑटो ही चलाना चाहिए?
0: ये मैंने सोचा, फैक्ट्री लेके बच्चे उजा नहीं सकते।
1: हाँ।
0: बच्चा बिना माँ के रह नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब मैं उसे पालने वाली हूँ, मैं उसे रखने वाली हूँ, तो मैंने सोची तो फिर मैंने काम छोड़ दिया बच्चे के खातिर। उसके वजह अगर फिर मैंने सोचा मैंने फिर मुसीबत ना आ जाए मेरे बच्चों पे।
1: जी,
0: इसीलिए मैंने सोचा ऑटो भी चलता रहेगा और मेरा बच्चा भी पलता रहेगा,
1: और साथ ही साथ अपने मन की मालिक हो।
0: हाँ।
1: जब मर्जी ऑटो चलाओ, जब मर्जी अपना नहीं जाओ, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जाना ही जाना है।
0: कोई जबरदस्ती नहीं
1: है, ना, जबरदस्ती नहीं है। तो कौन कौन सी रोड से आप ऑटो लेके निकलती हैं?
0: वैसे मैं सब रोड पे चला लेती हूँ।
1: सब रोड पे चलाती?
0: गुलाब बाड़ी, अभी तो मैं गुलाब बाड़ी जाई।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइएगा मैम, मतलब आपने जब ये ऑटो का सिलसिला शुरू किया, जब आपका पहला दिन था, तो घर पर जब आप पहली कमाई लेकर गई तो कैसा लगा? घर वालों को, घर वालों को दिखाया आपने?
0: सब, और क्या ना, अभी मैं अपने घर वालों के हाथ में देती हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब पति देव क्या करते हैं वैसे?
0: वो टायर पंचर का काम करते हैं।
1: टायर पंचर का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब आप ये मेहनत से पैसे लेकर जाती हैं।
0: ये लगता है कि हाँ, देख पैसे, पहली बात तो पैसा देते हो आप लोग।
1: हाँ।
0: दूसरी बात, मैं आपकी सेवा भी करती हूँ।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत सही कहा। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ पर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। और कहते हैं ना, एक नारी जिसे हम शक्ति नारी बोलते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। तभी तो कहा जाता है, कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। और ऐसे ही आज नारी शक्ति, एक सशक्त नारी, आज के जमाने की नारी मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त, जिनको आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। आप वैसे कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
0: खदाना गांव में।
1: खदाना गांव में, तो ये मुरादाबाद में पड़ता है? अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ से डेली आप सफर करते हैं, कितने बजे सुबह आपकी शुरुआत हो जाती है?
0: सुबह तो देखो, दो बच्चे हैं, दो लेडीज हैं मेरे पास, लगी बनी है वो तो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो मैं 7 बजे अपने घर से निकल कर आ जाती हूँ, खाना बाना बना के सारे काम घर के,
1: मतलब खुद करती है सारा काम।
0: हाँ जी। और
1: तो सुबह कितने बजे निकलती हैं?
0: सुबह मैं 7 बजे निकल,
1: 7 बजे निकल जाती हूँ। और शाम को कितने बजे घर लौटती
0: हैं? शाम को 6 बजे घर पहुँच जाती हूँ।
1: 6 बजे आप घर लौटती हैं। ओके। रामपति शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मुरादाबाद की सड़कों पर ऑटो चलाती है, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। और ये काम बहुत आसान नहीं होता, स्पेशली एक महिला के लिए जब वो घर से बाहर निकलती है। लाइफ में बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लाइफ इतनी आसान जितनी मुझे और आपको लगती है ना सामने वाले की, उतनी एक्चुअली होती नहीं है। परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है। रामपति जी, आपकी जिंदगी में थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती होंगी,
0: तो
1: कैसे डील कर लेती हैं आप?
0: ये तो होता ही रहता है घर गृहस्थी,
1: मतलब एक तो आप इतनी प्यारी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी सुंदर मुस्कान के साथ मैम बात कर रही हैं, इतनी पोलाइटनेस के साथ, मतलब कैसे आप इतना कर लेती हैं?
0: घर गृहस्थी में सब हो जाता है,
1: सब हो जाता है, मतलब आप हमेशा ऐसी रहते हैं।
0: हाँ।
1: ऐसी मुस्कुराते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हमारे ऑफिस में आके अभी कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: बातचीत करके कैसा लगा?
0: बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, मतलब कुछ डर तो नहीं लगा?
0: नहीं, ऐसा लगा मैं अपने घर में बैठी हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस हमें यही चाहिए। थैंक यू सो मच। ये रामवती शर्मा जी है जिनके बारे में हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो आपकी तरह काम करना चाहती, पेट पालना चाहती, अपने बच्चों को पालना चाहती, क्योंकि एक सही काम करके अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है मैम। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो आपकी आवाज सुन रही है, जो कर रखना चाहती है लेकिन घर की तरफ से रोक दिया जाता है।
0: वो भी हिम्मत रखे, हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी को भी, मैं हूँ चाहे कोई भी लेडीज हो, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत हार जाता है तो इंसान समझ लो गया
1: गया। बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल
0: दिल बुलंद होना चाहिए, अपनी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए।
1: क्या बात है, और आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर आप सही है तो सब सही है ना। देखिए बहुत अच्छी बात बोली रामवती शर्मा जी ने, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है कुछ करने की, आप ताकत रखती हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता। बहुत अच्छी और मजबूती तरीके से जो है जवाब दे रही हैं। और मुझे बड़ी मजे की बात यह है कि देखिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बातचीत आ रही हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। और मैम बिल्कुल मतलब जो है ना, एक होता है कि थोड़ा नर्वसनेस, थोड़ा अनकॉन्फिडेंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर रही है रामवती जी, मतलब बहुत ही बढ़िया। पहले कभी बोला है आपने ऐसे, तो इतनी मतलब ऐसे कैसे आप बोल पा रही है?
0: जैसा इंसान मिल जाता है ना, मुझे उसी में रमना पड़ जाता है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। तो दोस्तों ये होता है एक असली कॉन्फिडेंस, एक असली जज्बा, और ऐसे जज्बों की कहानियां और ऐसे ही बुलंद कहानियां हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां आप सुनते हैं तमाम वो बातें जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलती हैं। रामवती शर्मा जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में, थोड़ा सा जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे मैंने कहा करना चाहती हैं पर वो नहीं कर पाती, उन्हें लगता है परिवार रोक रहा है, बच्चे रोक रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, तो आपके साथ आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ की मम्मी क्यों चला रहे हो जब हम हैं? तो
0: किसी ने नहीं कहा, मैंने सबकी मर्जी से काम।
1: अच्छा, सबने आपको परमिशन दे दी। तो अभी मुरादाबाद सड़कों पे आप इकलौती महिला ऑटो चलाती हैं या और भी हैं?
0: मैंने तब तक कोई देखा नहीं है।
1: आप ही चलाती हैं ना? तो गाइस अगर आपको अगली बार कोई महिला दिखती है पीली कोठी की तरफ, कहाँ कहाँ से आप गुजरती हैं?
0: मैं सब तरफ दिख जाती हूँ।
1: सब तरफ जाती हैं। हाँ। तो अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो एक बार नाम पूछ लीजिएगा, कहीं आप वही रामवती तो नहीं जो रेडियो पे बात कर रही थी? तो आपको लोग पहचानेंगे तो आप भी पहचान जाइएगा, ठीक है मैम? हाँ। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ कहना चाहती है? बहुत लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं रेडियो पे, कोई मैसेज देना चाहे, कोई संदेश महिलाएं जो लेडीज?
0: मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैं हिम्मत रखती हूँ वैसे सारी महिलाएं हिम्मत रखें। देखो घर परिवार चलाना है तो हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए।
1: अब मैम आपकी कितनी उम्र होगी अभी?
0: मेरी 45।
1: देखिए 45 की उम्र में भी सड़कों पर ऑटो चलाती हैं, और जिसे कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक सही डायरेक्शन में काम कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमारी तमाम महिलाओं को एक इंस्पिरेशन दी है, जो यहाँ पर आपने बातें रखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। आपको यहाँ आके अच्छा लगा?
0: बहुत अच्छा।
1: आगे भी आना चाहोगे?
0: बिल्कुल, जब आप बुलाओगे मैं पक्का हाजिर हो जाऊंगी।
1: चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानी के साथ, किसी और नई लेडीज के साथ, कुछ और नई संघर्ष की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है। और देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बाय नहीं बोला था ना, लेकिन मैं आप सभी के साथ एक नई कड़क जानकारी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। आप सुन रहे हैं अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और हमारे CM जी की तरफ से भी एक बहुत ही प्यारा संदेश है जिसको मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पाती हर हफ्ते एक नया और खास संदेश लेकर आती हूँ, जो हम सबको नया सोच और एक नया सीख से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है के मौके पर योगी जी ने युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक संदेश भेजा है। योगी जी कहते हैं कि आज के समय में तकनीकी बहुत जरूरी हो गई है। अगर हम तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो समय आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आपको बता दें कि आज के ही दिन यानी कि 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है, शुभांशु शुक्ला का एक मतलब उनका एक जिक्र किया है, जिनकी सफलता अंतरिक्ष यात्रा से 140 करोड़ भारतीयों का सीना यानी कि गर्व से चौड़ा कर दिया था। इसीलिए हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखने का, नया सोचने का मौका मिलता है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारे CM जी की तरफ से बहुत प्यारा संदेश आप सभी तक पहुंचाया मैंने। देखिए, हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए, वो भी शिद्दत के साथ। और जो भी आप काम कर रहे हैं, एक अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप आगे बढ़िए, आप अपनी जिंदगी में जरूर सफल होंगे। और आर्जेरीना अब यहाँ से लेती है जाने के इजाजत। आपको हम कल मिलेंगे जी और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आर्जेरीना लेती है से जाने की इजाजत, बाय।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट TB, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
6: हेलो जी, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और आज का जो ये सेशन है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े ऐसी एक्सपर्ट जिनको सुन के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। एंड शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बिकॉज ये इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करती है और साथ ही साथ हमारे आसपास के लोगों को भी मेंटेन करके रखती है भाई साहब, क्योंकि किसी की स्माइल अच्छी बनाती है, किसी की स्किन अच्छी बनाती है, किसी के बालों को अच्छा बनाती है। एंड मतलब शी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। एंड किनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी आवाज आप सुनेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। वेरी वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी एंड इनके बारे में मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगता है कि मुझे नहीं अब इनको बोलना चाहिए। सो डॉक्टर दिशा जग्गी मेरे साथ मौजूद है। हेलो।

0: आवाज से मेरी वो नहीं अटेंशन नहीं हटती है.
1: मैम थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर द बिग कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम सो हैप्पी एंड स्पेशली नाइस टॉकिंग टू यू. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी आपका देखता रहता हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम सुपर हैप्पी.
0: माय प्लेजर.
1: थैंक यू सो मच. अच्छा मैम, आज तमाम लोग आपको सुन रहे हैं हमारे रेडियो स्टेशन के थ्रू, थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को.
0: हाँ जी, मैंने अपना एस्थेटिक मेडिसिन एंड एंटी एजिंग मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से किया है. अलॉन्ग विद दैट

0: Like on Google and on Instagram, you can find me.
1: That's very amazing, wonderful introduction, ma'am. Seriously. So, ma'am, शुरू करते हैं आज का सिलसिला. सबसे पहला questions मेरा यही होगा आपसे. मैम, आजकल ना Instagram का जमाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है. Instagram पे जैसे हम Instagram ऑन करते हैं, हजारों डील्स हमारे पास आ जाते हैं. स्पेशली आप ये वाला फॉर्मूला आजमा लो, आप ये वाली रेमेडीज फॉलो करो, चाहे स्किन से रिलेटेड हो या बालों से रिलेटेड हो. और कई बार लोग वो इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो कितना ज्यादा हमारे लिए सही होता है और कितना ज्यादा रॉन्ग होता है, आजकल ऑडियंस को पता नहीं है. वो कुछ भी कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं.
0: So, देखो, I will not say कि all home remedies are wrong. मैं एक generalized चीज नहीं बोल सकती. या एक जो होम रेमेडी है वो सबको सूट करेगी, मैं वो भी नहीं बोल सकती. सो सी डिफरेंट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, सो यू नो समथिंग लाइक मसूर की दाल, बेसन विल हेल्प यू आउट टू रिड्यूस योर ऑयल सिक्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. कि हल्दी लगा लिया. एंड देन जो ड्राई स्किन टाइप्स हैं, उन्होंने अगर कर्ड के साथ में कुछ लगा लिया, कर्ड के साथ मिक्स करके, सो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प देम आउट. बट अगेन, हर

0: मुझे लगता है हर दूसरे इंसान को हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, और आई थिंक इसका रीजन में मुझे लगता है कि आजकल का लाइफस्टाइल भी है, बिकॉज इतने लोग इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें खुद के लिए भी समय निकालना है, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: स्किन का जो हेयर के इश्यूज हैं, एज यू स्पेसिफिकली मेंशनिंग, तो बाल सिर्फ हमारा, देखो पहले जो जनरेशन था जिसको ये अफेक्ट करता था वो जनरली 40-45 प्लस था।
0: करेक्ट।
1: जैसे अगर जिनको गंजापन आ रहा है तो क्या हो गया था, एक बहुत एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी था कि ठीक है गंजापन है कोई बात नहीं, अब तो उम्र हो गई। अब क्या है, पीपल इन देयर 20s आर हैविंग हेयर फॉल, पीपल इन देयर 30s आर हैविंग हेयर फॉल, जिनकी शादी नहीं हुई है दे आर स्टार्ट फिनिशिंग कॉलेज, बॉयज गर्ल्स, और उनको मैसिव हेयर फॉल है। और ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक इसमें रीजन होता है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12 एंड आयरन प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, सीरम फेरेटिन और TIBC, दैट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और थायराइड। ये तीन चार टेस्ट आप अगर अपने करा लेते हैं तो आपको अपने स्टेटस, स्किन के अंदर का या बॉडी के अंदर का स्टेटस पता चलता है कि डेफिशिएंसीज किसकी है। अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक है सपोज, देन हार्मोनल रीजन एक और होता है जिसमें बालों में पतलापन या थिनिंग आने लग जाती है। अगर विमेन का होगा तो आपकी मांग चौड़ी होने लग जाएगी और बालों में क्वालिटी मोटे से पतला होगा, और अगर मेन में हो रहा होगा दे विल बी एम शेप पैटर्न, एक एम शेप का पैटर्न फॉलो करेगा आगे से स्कैल्प पीछे, मतलब फोरहेड और सर के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो हेयरलाइन खत्म होती जाएगी, बोलते हैं रिसीडिंग हेयरलाइन। राइट, सो वो हार्मोनल पैटर्न है। सो किस वजह से हो रहा है हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, न्यूट्रिशनल बेस्ड है, हार्मोनल बेस्ड है, एंड कई बार होता है हमारे गट में इश्यूज होते हैं कि हम दवा तो खा रहे हैं मगर बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है उसको।
0: Correct.
1: तो वो एक और इश्यू होता है। सो वो यू हैव टू, मैं उसका एक वो नहीं बता सकती कि रामबाण है ये कर लो हो जाएगा। आपको हमेशा एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, कंसल्ट डॉक्टर, सो दैट यू नो आप क्या कर रहे हैं।
0: एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा आपने बताया मैम। एंड आई थिंक मैम एक और चीज जो आजकल हम देख रहे हैं मैं यूथ में, इनफैक्ट हर किसी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, लोग खुद से कुछ भी यूज कर लेते हैं, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पिंपल स्किन एक्ने की अगर मैं बात करूँ, एक एक्ने एंड पिंपल ये बहुत ज्यादा स्किन में आजकल बढ़ता जा रहा है लोगों को मैं देख रहा हूँ। इवन मेरी कजन सिस्टर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बट वो क्या करती है कभी भी कोई भी क्रीम उसने मेडिकल स्टोर से ले लिया, कुछ भी लगा लिया, जबकि एक्ने एंड पिंपल इट्स नॉट वेरी इजी प्रॉब्लम, आई थिंक ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, एंड मेरे से बेटर तो ऑफकोर्स आप ही जानते हैं। तो मतलब किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया, मेरी कजन सिस्टर वो कुछ भी लगा लेती है, तो क्या ये करना चाहिए अगर किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है?
1: वही सबके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर लो, कपड़ों के साथ कर लो, मगर स्किन के साथ मत करो। स्किन में एक बार पिंपल्स आ गए तो खड्डे हो जाएंगे या स्कार्स हो जाएंगे या आपका पिगमेंटेशन हो गया। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माय क्लिनिकल प्रैक्टिस कि मैम बेटनोवेट लगा रहे थे, किसी ने स्किन लाइटनिंग क्रीम दी, स्किन गोरी हो जाएगी। अब उसके क्या होता है, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट देगा वो, मगर साथ में स्किन को डैमेज कर देगा, आपका स्किन का जो बैरियर है ऊपर वाला उसको उड़ा देगा, साथ में बालों फेस पे बाल आने लग जाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी धूप से। सो दीज आर द साइड सम साइड इफेक्ट्स। और साथ में क्या होता है, फिर ऐसी स्किन पे काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने स्किन का बैरियर डिसरप्ट कर दिया है बाय यूजिंग समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड देन उसके बाद जब मैं कोई माइल्ड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर कुछ भी देती हूँ तो वो जल्दी काम ही नहीं करता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो स्पेशली एक्ने के लिए यू शुड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, आज की तारीख में इफ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर आप ऑनलाइन दिखा लो एंड देर विल बी पीपल टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो एक्ने में आपकी डाइटरी हैबिट्स प्ले अ वेरी मेजर रोल, कि अगर आप मीठा खा रहे हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो दैट हैज टू बी कट डाउन।
0: ऑलराइट, बिल्कुल सीखा। अच्छा एक और चीज मैम, आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, इवन तो देख ही रहे हैं आजकल सभी देख रहे हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का चल रहा है आजकल, लोग ये करा रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा क्रेज भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी बन गया है और काफी बढ़ भी रहा है ये, बट एक्चुअली क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है?
1: परमानेंट इफ यू आर लुकिंग एट कि जिंदगी भर वो बाल रहेंगे, नो दैट
0: डजंट हैपन।
1: या सो द हेयर जो आपके पीछे डोनर एरिया से निकाले जाते हैं फ्रंटली, उनको ट्रांसप्लांट या लगा दिया जाता है स्लिट्स बनाते। अब उनकी जो लाइफ स्पैन है जनरली अगर आप उनका अच्छा केयर करते हैं तो समवेयर अराउंड 8 to 10 years वो रहते हैं। एंड उसमें भी ऐसा नहीं है, वो देखिए हमने बीज लगाया है, अगर बीज लगा के तो उसमें खाद नहीं डालेंगे देन ऑल्सो देयर आर चांसेस दे कैन फॉल ऑफ अर्ली। सो आपको उसकी भी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, साल में 1 या 2 सेशन मेंटेनेंस के आपने लेने रहते हैं GFC या PRP के, एंड व्हाटएवर मेडिकेशन आपका डॉक्टर ने बताया है वो आपको ऑन एंड ऑफ लेना रहता है।

0: All right, very nice. अच्छा मैम, अगर मैं आपसे वही एक आम इंसान के बारे में बात करूँ, सपोज दैट कोई इंसान है जो सुबह से शाम तक बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में, बट शाम को एटलीस्ट हर किसी के पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो खुद के लिए टाइम निकाल सकता है और वो इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता इनफैक्ट. सो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी की बात करूँ, लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, बट वो दो तीन चीजें ऐसी क्या कर सकता है जिससे उसकी स्किन भी हेल्दी रहे, उसके बाल भी हेल्दी रहे और उसकी पर्सनैलिटी भी शाइन करे, कॉन्फिडेंट बढ़े, अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहें personality ko.
1: First of all, which I personally recommend, dekhe, nothing can reap a good fit personality, that is इंसान जो की हेल्दी है और फिट है.
0: Absolutely.
1: Yes, that is your workout, exercise. जैसे आप मुंह में खाना डाल रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपका शरीर हिलाना है. सो प्लीज मूव योर बॉडी, क्योंकि द मोमेंट आप अगर फिट हैं और अगर आप एक कमरे में वॉक इन करते हैं, द कॉन्फिडेंस यू होल्ड, नो बोटॉक्स, नो फिलर, नो लाइपोसक्शन, कुछ आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जो कॉन्फिडेंस आपकी फिट बॉडी आपको दे सकते
0: हैं.
1: सेकेंडली, योर वट एवर आप मुंह में डाल रहे हैं, देखिए आज की तारीख में एज आई यू सेड इंस्टाग्राम आप खोलो, ओवर नॉलेज है, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके कौन से इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है और आपको पता है कौन से नॉन इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड है, मतलब कि प्रोसेस्ड सबको पता है खराब है, सबको पता है मैदा खाना नहीं है, सबको पता है कि पैकेट से निकला हुआ खाना हेल्दी नहीं है. वी ऑल नो दिस, हरी सब्जी खाइए, फ्रूट्स खाइए, जो हम लोग क्लास वन से पढ़ रहे हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. शाम को वो समोसे आए, हाँ भाई लाओ लेकर खाते हैं. तो दैट इज हाउ हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन बन चुके हैं.
0: Exactly.
1: It's a disgraceful and a shameful thing.
0: Absolutely.
1: So nothing to be proud of. And secondly, yeah, nutrition, as in आप अपने मुंह में जो भी डाल रहे हैं, प्लीज देखिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है.
0: वैल्यू क्या, करेक्ट.
1: या एंड थर्डली आई वुड से जस्ट यूजिंग द बेयर मिनिमम विच सूट्स यू. लाइक आपको सब नहीं लगा लेना है कि मैं सब देखा सब कर लिया. बेसिक यूज करने सामान यूज करिए टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, विच इज अ बेसिक पार्ट ऑफ ग्रूमिंग. जैसे एक सनस्क्रीन हो गया मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर, एक मेडिकेटेड फेस वॉश. ये तीन चीजें अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यादा नहीं कहूंगी बट 60-70% योर लाइफ विल बी अंडर कंट्रोल.
0: That's very amazing, ma'am. बहुत ही wonderful तरीके से आपने explain कर दिया and very very quickly आपने बता दिया, मतलब unbelievable, incredible, ma'am. Lovely talking to you, ma'am. एक question, this is my personal question, so I want to ask you कि जैसे आजकल ना बालों में dandruff की problem बहुत हो रही है और कई लोगों को लगता है कि hair fall अगर हो रहा है, dandruff हो रहा है, तो हम अगर daily shampoo करेंगे तो ये काम हो जाएगा.
1: Okay, so dandruff generally जो होता है हमारा excess में sebum या oil secretion होने के कारण होता है.
0: All right.
1: और एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम होता है मेलासीजिया. ये फंगस सीबम या ऑयल पे थ्राइव करती है. उसका खाना है सीबम. तो और कुछ खाने हैं, कुछ फूड्स हैं जैसे कि डेयरी, दूध, चाय, कॉफी, शुगर, इन चीजों से हमारा टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी की मात्रा बढ़ती है.
0: Alright.
1: और जिन चीजों से डीएचटी बढ़ेगा उनसे आपका सीबम सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा स्कैल्प में, फेस पे.
0: Okay.
1: तो जब वो होता है तो आप फंगस को खाना दे रहे हैं कि आओ बेटा खाओ खाना. तो इसलिए उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी डाइट में, उससे फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज, ऑल्टरनेट डे बाल धोना चाहिए. हम लोग जितनी धूल मिट्टी में रह रहे हैं, आपके स्कैल्प में गन दो दिन बाद अगर हल्का फुल्का भी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट तो उस पे धूल मिट्टी बैठ जाती है. सो योर स्कैल्प इज डर्टी, तो उसको क्लीन करना है. गंदा स्कैल्प रखेंगे हेयर फॉल ज्यादा होगा. ऑल्सो जो लोग हेयर फॉल गो थ्रू कर रहे होते हैं वो हेयर वॉश ही नहीं करते चार चार दिन, सात सात दिन, क्योंकि मैम मैं बाल छूता हूँ तो और बाल झड़ता है भाई. फिर ऐसा क्या, ऐसे हेयर फॉल बढ़ जाता है. सो केटाकोनाजोल बेस्ड मेडिकेटेड शैम्पू 2% केटाकोनाजोल आप यूज कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डे हेड वॉश करना चाहिए विथ ल्यूकवॉर्म और कोल्ड वाटर. गर्म पानी मत यूज करिए.
0: ओके, मतलब इससे हम काफी हद तक फिर हम बच भी पाएंगे. इनफैक्ट
1: इससे काफी हद तक बच सकते हैं. इससे ये इवन अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, केटाकोनाजोल बेस्ड शैम्पू अगर वंस अ वीक आप यूज करते हो फॉर योर स्कैल्प, जो भी बिल्डअप हो जाता है हम लोग की स्कैल्प में वो भी क्लीन करता है.
0: करेक्ट. ओके, सो सी मैम, अच्छा एक और चीज, ये तो हमने ये तो नेचुरल प्रोसेस की बात हमने कर ही ली. अगर मैं बात करूँ डाइट की, थोड़ा सा अगर आप इसकी तरफ अगर हम बढ़ना चाहें, आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचुरल डाइट बॉडी में डालना बहुत जरूरी है. जैसे आजकल खीरा है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों को कितना असर पड़ता है हमारी स्किन पे, हमारे बालों पर.
1: सी, नेचर इज अ ब्यूटीफुल थिंग. आप देखेंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, नेचर की सब्जियां और फल चेंज हो जाते हैं. आप वाटरमेलन खा लीजिए, आप हाइड्रेट हो जाएंगे, आप फुल हो जाएंगे.
0: करेक्ट.
1: ठीक है, आपका हाइड्रेशन पार्ट, फाइबर पार्ट आपको फ्रूट से बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि पता है कि भूख कम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू समर्स. एंड आपको थोड़ा सा प्रोटीन का अपना इंटेक का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग की इंडियन डाइट में ज्यादा प्रोटीन कभी भी था ही नहीं. सो हम लोग को प्रोटीन की मात्रा हमेशा खाने में रखनी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे बाल और स्किन बना प्रोटीन से है. तो आप अगर वेजिटेरियन है तो सत्तू को अपने डाइट में इंप्लीमेंट करिए मॉर्निंग इवनिंग. सत्तू का पाउडर आता है. देखिए नॉन वेजिटेरियन के पास बहुत सोर्सेज है. वेजिटेरियन के ऊपर मैं बात करूंगी ज्यादा. जैसे कि आपकी दाल हो गई, दाल आप खाइए, ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट कुछ तो मिलेगा. सेकेंडली छोले हो गए, सफेद छोले, काले चने, योर कड़ी जो दही के अंदर पेस्ट पे बनी हो, और योर राजमा, लोबिया. तो अलग अलग दिन एक एक चीज इनमें से जरूर लीजिए. देन सोयाबीन की वड़ी, तो ये अपने खाने में डाइट में हर रोज बनाइए. एंड इवनिंग्स के टाइम अगर आप एग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट दो अंडा खा सकते हैं, दो से तीन एग व्हाइट्स. और इसके साथ अगर आप फ्रूट्स ले हो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो इन योर एवरीडे डाइट, खीरा, ककड़ी, योर वाटरमेलन, मस्क मेलन इन योर फ्रूट्स, जो बेरीज आती हैं जो वाइटमिन सी रिच होती है, आंवला अगर डाल सकते हैं आप हर चीज में, किसी भी फॉर्म में, जूस में ले लीजिए, मुरब्बा ले लीजिए, अचार ले लीजिए, कुछ भी, एक पूरा आंवला खाइए. सो आपका स्किन ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन होके ग्लो करेगा.
0: That's very nice, ma'am. That's very nice. Ladies and gentlemen, boys and girls, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर दशा सिर्फ लोगों का इलाज नहीं करती है, बल्कि इनफैक्ट वो एक इंस्पायरिंग, जैसे कहते हैं ना, इंस्पायरिंग वाली फीलिंग्स अंदर से आना, इंस्पायर होना, वो एक अमेजिंग लेडी है. मैम इतना सारा कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब खुद की लाइफ के लिए भी प्रोडक्टिविटी और मतलब सबके लिए इतना सारा कुछ करना, मतलब अनबिलीवेबल. कैसे मतलब इतना एनर्जेटिक है, अभी भी आप इतना एनर्जी साउंड कर रहे हो.
1: I am already working in the clinic. I have one patient already lying down, two people waiting outside.
0: Oh my God.
1: But your point is this, that see, मैं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, I practice what I preach. मैं जितनी कहानी सुना रही हूँ चार लोगों को, मैं अपने ऊपर भी personally वो यूज कर रही हूँ. That is why I know how it works. मुझे पता है उसका क्या रिजल्ट है और वो कैसे काम करता है.
0: That's very nice, ma'am. And I think मुझे लगता है कि हर एक women कुछ special कर सकती है अगर वो कुछ अच्छा ठान ले तो करने का.
1: True, आज की तारीख में women, men, they are all doing the same.
0: 100%.
1: So, ऐसा कोई वो specific कब है नहीं रहेगा.
0: अच्छा मैम, मैं एक चीज के बारे में जानना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जब मैंने कल आपसे बात करी थी तो आपने एक स्माइल के बारे में बात करी थी कि घूमी हुई स्माइल ठीक करना, एंड जिनकी चिन शेप में नहीं होती है वो इंप्रूव करना, फेस का वॉल्यूम वापस लाना, वो सब कुछ कैसे, मतलब थोड़ा सा उसके विषय में अगर मैं जानना चाहूँ तो
1: बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ फेशियल एस्थेटिक्स ओनली, जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो जैसे किसी के गम्स दिख रहे होते हैं स्माइल करते समय, उसको हम गम्स को नीचे ला सकते हैं, हल्का सा बोटॉक्स ट्रीटमेंट या बॉटुलिनम टॉक्सिन को डाल के आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं. इट इज अ 2 मिनट्स प्रोसीजर, हार्डली कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees, एंड आपके लिप्स जो गम्स दिखते हैं हंसते हुए वो चले जाते हैं. आपकी चिन कई बार होती है पीछे है, आपकी फेशियल प्रोफाइल में अगर आप साइड प्रोफाइल देख रहे हैं तो चिन थोड़ी सी पीछे आ रही है, तो फोटोज में अच्छा नहीं लगता है, या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे अच्छा नहीं लगता है. सो वी डू समथिंग कॉल्ड एज अ डर्मल फिलर. इमीडिएटली यू सी रिजल्ट्स विद इट, एंड वो आपको अगले एक साल तक लास्ट करता है एक सेशन आपका. एंड सिमिलरली ऐसी और चीजें होती है, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो नाक आपकी फ्लेयर हो रही है, तो हम हल्का सा बॉटुलिनम टॉक्सिन देते हैं और आपके नोज को पतला कर देते हैं. इट लुक्स लाइक कि आपने सर्जरी कराई है, बट सर्जरी नहीं होती है, 5 मिनट का काम होता है जिसको हम नेजल फ्लेयरिंग का बोटॉक्स बोलते हैं. दीज आर सम ट्वीक ट्रीटमेंट्स जो आपकी स्किन को और फेस को काफी एस्थेटिक बना सकता है.
0: That's very nice, ma'am. कितनी सारी चीजें आजकल आ गई, लोग सिर्फ AI पे ही निर्भर रह गए. भाई AI से आगे भी दुनिया आ गई. आई नो AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है हमारे आसपास जो कि हमें पता ही नहीं है. इनफैक्ट वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर दशा मैम, अपना टाइम आपने हमारे लिसनर्स को दिया. थैंक यू सो मच एंड लवली टॉकिंग टू यू. एंड सच बताऊं तो मुझे तो आपसे बहुत सारी बात करी थी, लेकिन कैसे 20 मिनट हो गए, अनबिलीवेबल.
1: सीरियसली थैंक यू सो मच. आई नो हम लोगों को 10 मिनट बात करनी थी, वी आर ऑलरेडी डन 20 मिनट्स.
0: जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहती हैं तमाम ऑडियंस आपकी आवाज सुन रही है रेडियो पर.
1: जस्ट बी फिट एंड बी योर ऑसम सेल्फ, दैट्स ऑल आई वांट टू से टू एवरीवन.
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, वंडरफुल मैसेज.
1: आप मुझे सुन रहे हैं RJ आनंद के साथ ऑन FM मुरादाबाद, एंड आई एम डॉक्टर दिशा जग्गी, एंड यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर दिशा जग्गी.
0: लवली टॉकिंग टू यू मैम, थैंक यू सो मच. बाय बाय मैम.
1: थैंक यू. बाय बाय.
0: नाइस डे मैम. थैंक यू.
1: Bye-bye.
0: गाइस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6. फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के साथ. तब तक के लिए कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए आपके शहर का अमेजिंग रेडियो स्टेशन. स्टे कनेक्टेड.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यहीं चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं, तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर, आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है। लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
8: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूँ और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
7: लेकिन सर, आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
8: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
7: तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
8: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है, और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
7: हाँ जी, हाँ जी।
8: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
7: बिल्कुल,
8: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
7: बिल्कुल। सो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
8: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
7: बिल्कुल सर।
8: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
8: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
7: बिल्कुल बिल्कुल,
8: तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
7: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
8: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
1: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको भी पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है,
8: ठीक है।
1: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
8: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिये मैंने भी कई काफी सोचता हूँ मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहाँ, जहाँ एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
8: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
8: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भी इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
1: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
8: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
1: करेक्ट करेक्ट।
8: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
8: ऐसा कुछ उनको एक
1: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक, तो मतलब सेम होती थी सर।
8: बिल्कुल।
1: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। हम
8: भी अपने सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी,
1: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
8: बिल्कुल गाइडेंस मिल जाती थी।
1: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
8: हर साल समझूंगी। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई बस ऐसा चेंज ना हो कि
1: बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज
8: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
1: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
8: देखिए कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
8: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
1: खत्म
8: हो जाती है। वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
8: तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो वो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
1: करेक्ट करेक्ट।
8: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चल
1: आगे भी बढ़ेगा, देश का
8: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
1: सर तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
8: बिल्कुल हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
8: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
1: जी। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: अगर 12th के बाद सही करियर को चुनने में हो रहे हैं परेशान तो सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री लेकर आए हैं आपके लिए बी ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
4: पूरा पता रामगंगा बिहार मुरादाबाद, कॉन्टेक्ट नंबर 9520865246।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं? तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
7: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
6: बिल्कुल सर।
7: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
6: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
7: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
7: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
6: बिल्कुल।
7: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
6: करेक्ट
7: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती,
6: बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
7: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
6: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
7: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है, बड़े होके कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
6: बिल्कुल।
7: तो निश्चित तौर पे ये कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
6: करेक्ट।
7: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
6: उड़ाते
7: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करे।
6: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बात, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ।
7: पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है और बच्चा घर पे डर के बता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते
6: हैं। ये ये
7: तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
6: करेक्ट करेक्ट।
7: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन

0: में भी जा सकता है, तो आपको उससे फ्रेंडली एटमोस्फियर रखना है एकदम।
1: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है, तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने तीनों।
1: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
0: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमोसफियर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सहन में चीजें बैठती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
1: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत
0: पेरेंट्स
1: अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दे, बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
1: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है, वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
0: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है,
1: वही ना बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
0: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
0: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने, तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है। आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहां से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट। वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप,
0: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओं अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं, हमारा मैजिकल नंबर है 9837 8968 96।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर्नी और समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: तो सर, हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म है कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
3: देखिए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
2: हाँ हाँ।
3: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना, ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
2: करेक्ट।
3: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स, तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से जो है हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप
2: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म हो रहा है,
3: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
2: हिसाब से
3: खेल कूद भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
2: करेक्ट।
3: और खेल कूद से, फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
2: करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे,
3: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
2: करेक्ट।
3: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
2: बिल्कुल।
3: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
2: करेक्ट।
3: हाँ, उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
2: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको अच्छे से नहीं कर पाते
3: हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में MBA की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए, कई एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आ रही है, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाए। हाँ, उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
2: करेक्ट।
3: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
2: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी, चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
3: देखिए, ये बहुत गलत हैबिट है। अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं। तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
2: करेक्ट करेक्ट।
3: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या, क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए।
2: करेक्ट।
3: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
2: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
3: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान
2: रखना चाहिए। और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन के टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
3: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
2: बिल्कुल सर।
3: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते। हाँ, हाँ। जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
2: करेक्ट करेक्ट।
3: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम गलत है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
2: बिल्कुल।
3: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हार्ट किया है तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
2: करेक्ट ये सर।
3: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हार्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
2: कैसे टेक ओवर करना चाहिए
3: उसको। और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
2: कोई भी हार्म ना हो चीज, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके
3: उसको सोच के बैठ जाए
2: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
3: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
2: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आपके आवास या प्लॉट पर बकाया राशि है, क्या बढ़ते ब्याज और देरी से आप परेशान हैं, तो अब चिंता छोड़िए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है एक मुश्त समाधान योजना 2026। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटियों के लिए यह सुनहरा मौका है। दंडात्मक ब्याज पर पूरी छूट, 30 दिनों में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट, आसान एक मुश्त निपटान। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अप्रैल 2026 से। आज ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क करें, अपना बकाया जानें और योजना का लाभ उठाएं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त प्रकार के संपत्तियों, आवासीय, संस्थागत एवं व्यावसायिक के डिफॉल्टर आवंटियों एवं मानचित्र डिफॉल्टर के लिए लागू।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
5: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
4: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है, पहली रैपिड रेल यही चली है, पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है,
5: सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन FM मुरादाबाद 9.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
7: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
6: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम अभी थोड़ी नई नई है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है, श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन श्रोताओं प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी भी ऑनलाइन है,
7: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
6: इनफैक्ट मजे की बात यह है आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है, तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है।
7: जी हाँ,
6: सही कहा ना मैंने,
7: सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
6: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बारी। तो श्रोताओं आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन, बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसा लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पर व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक, और कहीं स्नैपचैट, और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है, जरा ये बताओ। तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: एक्चुअली मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है। गाइज आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ। मैम दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो। फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग भी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल ना जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, मेरी हाँ, तो
0: आपकी शादी हुई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ। लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। चीजें बहुत आसान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ अरे वाह, बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, या बॉयज के साथ भी हो जाता है।
0: ट्रू। आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट।
0: ये भी बहुत हो रहा होता है, कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: आइयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगे, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी।
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी आप पैसे निकाल लें एटीएम से, तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों

0: हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोगों का क्या हाल होगा,
1: आधी दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: अरे वाह मिसेस गुप्ता, तुम्हारी जूड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है।
1: हाँ

0: मिस्टर गुप्ता, सुंदर तो होगी ना, ये मैंने खरीदी है मधुरम ज्वेलर से।
1: अरे वाह।
0: और इतना ही नहीं, जहां आपको मिलेगी कुंदन पोल की नकाशी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी,
1: और साथ ही में 18 हो या 20, 20 हो या 22 कैरेट की 1099 पर ग्राम मेकिंग चार्जेस पर ज्वेलरी भी अवेलेबल है। तो आज ही आए मधुरम ज्वेलर्स, कॉल 9412965333।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल?
4: UFM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत ज़रूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी नहीं, पूरी सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही हैं कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
5: ये गाना तो बहुत अच्छा था, और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ, खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में अभी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
4: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियाँ हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है। ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है, और कहीं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमज़ोर बनाते हैं, कई बारी अपना फ़ोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं, और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
5: शेयर नहीं करना चाहिए।
4: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
5: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के, ऐप्स के, जो भी होते हैं, उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी ID बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, only to person, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें, और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
7: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
6: पर पापा।
7: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
8: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
9: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है, क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रैवल प्लान।
10: रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है,
9: तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा? किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझकर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
4: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरे पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
5: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती हैं, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
4: बिल्कुल
5: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
4: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
5: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
4: अच्छा?
5: तो बोला था मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
4: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
5: सुपर बाइक।
4: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
5: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था। उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
4: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
5: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारी पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
4: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए।
5: जी,
4: है ना दोस्तों, ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ, स्मार्टनेस के साथ काम करना है। आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की ओर से, ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना है, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाएं, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा। क्यों?
5: जी राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है जिससे कि आप खो ना जाएं और लिंक पे क्लिक ना कर जाएं।
4: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुमकुम। अगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यूं कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा, तो सिर्फ किस वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइज, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चल रहा है, है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली, तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं RJ आनंद लेता हूं आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो।

0: बाय करो,
1: बाय,
0: बस भी इतना ही बोलेगी। अभी उसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है। इसने प्यार से बोला बाय, चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
9: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: एक्सेस यानी आपके आवाज की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी, तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं, तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है, तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है, तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
2: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
3: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए दो योजनाएं, नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धनधान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले, इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, ये KCC की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर GST कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ एफपीओ बने हैं। हमारी सरकार ने खाद्य तेलों पाम ऑयल से जुड़ा मिशन भी शुरू किया है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
2: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है? श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदें। फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्तों। धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

क्या आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं? जैकब हाई स्कूल लेकर आया है शानदार मौका। नर्सरी से दसवीं तक एडमिशन ओपन। सबसे बड़ी खुशखबरी, नर्सरी से लेकर यूकेजी तक सभी एडमिशन बिल्कुल फ्री। और अब कोडिंग क्लासेस, रोबोटिक्स, एआई, ड्रोन मेकिंग, स्मार्ट क्लासेस और कराटे क्लासेस सब कुछ फ्री। 40 सालों का अनुभव, बेहतरीन शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं। पता, ऑपोजिट जीनस पेपर मिल, अगवानपुर, मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 9528911112। जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। जैकब हाई स्कूल, आपके बच्चों के सपनों की सही शुरुआत।

0: अपना यूपी बदल गया, 9 वर्षों में संवर गया।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश बना 9 वर्षों में स्वर्णिम नव निर्माण का साक्षी।
0: विरासत को मिला सम्मान, विकास ही पहचान, सशक्त हो रही नारी, युवाओं के सपने हो रहे साकार।
1: अन्नदाताओं को मिला समृद्धि का उपहार, उद्योगों की प्रगति हुई अपार, वंचित गरीब का मान यहाँ, बिटिया का सम्मान यहाँ।
0: निवेश की लगी है होड़, अपना यूपी है बेजोड़।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

विकास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कनेक्टिविटी में क्रांति, अर्थव्यवस्था को नई गति।
1: विगत 9 वर्षों में रोड, एयर, मेट्रो और रेल कनेक्टिविटी में यूपी बना नंबर 1।
0: यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो संचालित है। पहली रैपिड रेल यही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ रहा है।
1: सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ अब उड्डयन प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से सुदृढ़ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश को प्रगति की नई रफ्तार दे रहा है।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।